FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

अभी आपने सुना संतोष अग्निहोत्री के स्वर में ये देशगान, रचना थी अविनाश पांडे की। आइए अब सुनते हैं चंदू आत्मा को इस भजन में।

हरिओम शरण के स्वर में अभी आपने सुना ये राम भजन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अनूप जलोटा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आस्था के स्वर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख और वाचक स्वर है स्वामी आत्मानंद जी का।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई का लोग काफी हवाला देते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहिं ते नर न घनेरे। इसका सरल अर्थ है, दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। जिस संदर्भ में गोस्वामी जी ने यह बात कही है वह हम पर भी घटता है। रावण अपने पुत्र मेघनाद का वध सुनकर मूर्छित हो जाता है। जब उसकी मूर्छा टूटती है तो अपनी स्त्रियों को विलाप करते देखता है, तब रावण जाकर उनको संसार की विनश्वरता का उपदेश देता है। गोस्वामी जी इसी संदर्भ में वह चौपाई लिखते हैं जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की। हम भी दूसरों को उपदेश देने के लिए कदम बढ़ाए रखते हैं, पर अपनी नसीहत का लाभ हम स्वयं नहीं उठा पाते। इस संदर्भ में एक घटना याद आती है, भिलाई में वह घटी थी। बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो गया था। इतने में एक ने आकर एक घर में सूचना दी कि उनके यहाँ का लड़का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और दुर्घटना में उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव लाया जा रहा है। परिवार पर तो कहर ढा गया। माता शोकावेग में मूर्छित हो गई। होश आने पर छाती पीट पीट कर रोने लगती। पड़ोसने आकर तरह तरह से समझाने लगी, कहने लगी, बहन धीर धरो, अपने दूसरे बच्चों को तो देखो, भगवान ने दिया था उसी ने ले लिया।

0: आदि आदि। इतने में शव आ गया। लड़के की मां एकदम उस पर झपट पड़ी। ऊपर की चादर हटाकर वह अपने बच्चे के शव को गोद में लेने ही वाली थी कि एक अचंभा घट गया। उसने देखा कि लड़का उसका नहीं है बल्कि पड़ोसिन का है, जो अब तक उसे तरह तरह से समझा रही थी। अब क्या था, दृश्य ही बदल गया। समझाने वाली पड़ोसिन पछाड़ खाकर गिर पड़ी और अब यह माता उसे समझाने लगी। तात्पर्य यह है कि हमें स्वयं अपनी बात में आस्था नहीं होती। हम दूसरों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, पर जब हमारे सामने एक छोटी सी बात को कार्य में उतारने का प्रश्न आता है तो हम मुकर जाते हैं। जैसे एक बार मैं अस्वस्थ हो गया। वात ने मेरे पैर को अचल बना दिया, चल नहीं पाता था। लोग बिना मांगे प्रिस्क्रिप्शन बताया करते थे। मैं रोग से जितना परेशान नहीं था उससे अधिक तो इन प्रिस्क्रिप्शन दाताओं से हो गया। कोई आयुर्वेदिक नुस्खा बताए तो कोई होम्योपैथिक, कोई एलोपैथिक तो कोई नेचुरोपैथिक। मैंने हर प्रिस्क्रिप्शन बताने वाले से पूछा कि क्या उसने स्वयं उस दवा से लाभ उठाया है, पर एक भी ऐसा न मिला जिसको दवा का खुद का अनुभव रहा हो। यह हमारी मनोवृत्ति है। यह सहानुभूति प्रकट करने का सबसे सस्ता तरीका है। न टेंट से कुछ जाता है, न इधर उधर जाने में हमारी चप्पल घिसती है। मुंह से बोलकर बस छुट्टी। शायद हमारी इसी मनोवृत्ति को देखकर शायर ने फिकरा कसा होगा, मुसीबत का एक एक से बयां करना है या मुसीबत मुसीबत से ज्यादा। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी बड़े भाई साहब में इस मनोवृत्ति का सुंदर चित्र खींचा है कि कैसे साल दर साल फेल होने वाला बड़ा भाई अपने होशियार छोटे भाई को अनावश्यक उपदेश देता रहता है। पतंग लड़ाने और कटी पतंग के पीछे दौड़ने के खतरे सुनाता रहता है और उसी समय जब एक पतंग कटकर गिरती है तो स्वयं उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। मतलब यह कि दूसरों को बिना मांगे उपदेश देना न केवल उनका समय बर्बाद करना है वरन अपना भी। ऐसा करके हम अपने को हल्का बना लेते हैं। यही नहीं बल्कि कभी कभी हंसी का पात्र भी। हमारे एक परिचित को उनकी इसी आदत के कारण उपदेशानंद का खिताब ही मिल गया है। लोग उन्हें देखते ही हंसने लगते हैं और वे यदि कोई गंभीर बात भी कहें तो भी उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। इसका दोष स्वयं उन पर है। अतएव हमें ऐसी आदत बनानी चाहिए कि हम वही बोलें जिसका हमें अनुभव है। अपने को व्यर्थ ज्ञानी या दूसरों से ऊंचा दिखाने की कोशिश न करें। दूसरों की वेदना में केवल शब्द सहानुभूति न प्रकट करें बल्कि सही अर्थों में उनके कुछ काम आने की चेष्टा करें। इससे हमारे चरित्र का विकास सधेगा।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और वाचक स्वर था स्वामी आत्मानंद जी का। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्री राम की मधुर मनोहर मूरत

विदेह जनक को अपनी तनमन की सुधबुध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं,

0: ये था श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। गायक स्वर था ए हरिहरन का। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है आज की कृषि चर्चा, विषय है नींबू की खेती। वाचक स्वर वाणी महोदय का है।
1: किसान भाई बहनों ने राम राम। आज कृषि चर्चा में हम बात करांगा नींबू की खेती का बारे में। नींबू में कई तरह का औषधीय गुण है, ने एक हमारा किसान भाई उंगई न अच्छा लाभ ले सकज। नींबू का पौधा ख लगाना का लेना 5.5 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी उपयुक्त रहे। मिट्टी की उर्वरता, जल निकासी, चूना न नमक सांद्रता जैसा गुण महत्वपूर्ण कारक छे। अच्छा जल निकास वाली हल्की मिट्टी पर नींबू का फल अच्छा उत्पादन दे। अब बात करें पौधरोपण की। नींबू का पौधा जून से अगस्त तक लगाई सकें। रोपाई का लेना 60 सेंटीमीटर चौड़ा न 60 सेंटीमीटर लंबा गड्ढा खोदी न उमा 10 किलोग्राम FYM न 500 ग्राम सुपर फास्फेट का साथ प्रति गड्ढा का साथ लगाया जा सकत। अब बात करान सिंचाई की। नींबू की सर्दी न गर्मी का दौरान पहले साल में करी गई सिंचाई नींबू का पौधा न का लेना जीवन रक्षक साबित हो। अच्छे सिंचाई को असर पौधा न की बढ़वा न फल न का आकार पर अच्छो पड़े। सिंचाई कम होना पर कई तरह की बीमारी न भी पौधा न लगी सके। बसंत ऋतु में मिट्टी का आंशिक रूप से सूखो रखनो फायदेमंद हो। अब बात करें खाद न उर्वरक की। एक साल में खाद प्रति फर्टिलाइजर को 3 बराबर खुराक नींबू का पौधा में डाली जा सके। मिट्टी पौधा की उम्र न पौधा की वृद्धि का आधार पर खाद न उर्वरक डालनो चाहिए। खाद उर्वरक की मात्रा हर साल बढ़ावता रहना चाहिए। न सूक्ष्म पोषक तत्व का मिश्रण को छिड़काव 1 या 2 बार साल में अवश्य करना चाहिए। नींबू का बगीचा न पहले का 2-3 साल तक अंतर्वर्ती फसल न का रूप में सब्जी न उगाई जा सके। अब बात करें कटाई छटाई की। एक मजबूत तना का विकास करना सबसे पहले 40 से 50 सेंटीमीटर में सभी नई

0: टहनी नख हटाई देनु चाहिए। पौधा का केंद्र ख खुलो रखनु चाहिए। क्रॉस टहनी नख की भी छटाई करी देनु चाहिए। जब पौधा पर फल लगेल हो तब कटाई छटाई नहीं करनु चाहिए। न सुखेल टहनी नख समय समय पर नींबू का पौधा से हटाई देनु चाहिए। नींबू का पेड़ को जीवन काल 20 से 30 साल को हो। नींबू 2 से 3 वर्ष में फल देना लगी जाए। शुरुआत में फलन की संख्या कम रहे लेकिन धीरे धीरे ओको उत्पादन लगभग 700 फल प्रति पेड़ प्राप्त होने लगी जाए। रूट सड़ाद न कॉलर रोड जैसा रोग ज़्यादा सिंचाई का होने का कारण होए। असम क्यारी क्षेत्र ख गीलो नहीं रखना चाहिए। साथ ही उच्च आवृत्ति का साथ हल्की सिंचाई फायदेमंद रहे। अब बात करा नींबू का मुख्य कीटन की साइट्रस साइलिया पत्ती माइनर स्केल कीड़ा फल मक्खी ई नींबू का प्रमुख कीट है। साइट्रस साइलिया की रोकथाम का लेना मेलेथियन को छिड़काव 0.05% मोनोक्रोटोफास 0.025% या कार्बारील 0.1% को छिड़काव करना चाहिए। न स्केल कीट रोग का नियंत्रण का लेना पैराथियन 0.03% पायस 100 लीटर पानी में डाइमिथियोट न 250 मिलीलीटर केरोसिन तेल 0.1% या कार्बरिल 0.05% प्लस ऑयल 1% को छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाई बहनों ने आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा। विषय था नींबू की खेती। वाचक स्वर वाणी महोदय का।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: और आकाशवाणी खंडवा से ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का।

आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आपसे कुछ देर बाद यानी 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर केंद्रित वार्ता। वार्ताकार हैं स्वास्थ्य सलाहकार दिलीप नांदिया। सुबह 7:20 पर होगा आपका इंतजार खत्म और आपके पत्रों के साथ हाजिर होंगे हम कार्यक्रम सुनहरे पत्र में। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज के कलाकार अदनान सामी। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 8:30 पर। राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे सुबह 9:00 से 10:00 तक, दिन में 11:00 से, दोपहर 2:30 से, रात्रि 8:00 से। सुबह 10:00 होगा जिले की चिट्ठी, इसे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुन सकते हैं। आपकी पसंदीदा गीत लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में सुबह 10:35 पर। निमाड़ी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा शाम 5:30 पर। युववाणी कार्यक्रम में आज का आकर्षण इंद्रधनुष। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 पर।

शाम 7:21 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज होगी जन उपयोगी भेंट वार्ता, कृषि समाचार, खंडवा उपज मंडी के भाव और मौसम की जानकारी के साथ साथ निमाड़ी लोकगीत भी। कार्यक्रम स्पॉटलाइट 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें।
2: आज की ताजा खबर।
1: अगले 5 सालों तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया बड़ा तोहफा। प्रदेश में वर्ष 2016 से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है और वर्ष 2031 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लिया जा सकेगा। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण के आवंटन जारी। आवंटित विद्यार्थी निर्धारित तिथि 26 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। शांति समिति की बैठक 22 मई को। आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों को आपसी सद्भाव और शांतिपूर्वक मनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक 22 मई को शाम 5 बजे से कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित होगी।

5 जून तक घर घर जाकर किया जाएगा बच्चों का हेड काउंट सर्वे। टीकाकरण से छूट गए बच्चों का 8 से 19 जून तक किया जाएगा टीकाकरण। 5 वर्ष तक के बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 मई से 5 जून तक चलाया जा रहा है सर्वे अभियान। कोलकाता की आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी जीत, ये हैं समाचार खेल जगत से। मुंबई को 4 विकेट से हराया, मनीष ने 45 रन बनाए, ग्रीन, कार्तिक और दुबे को 2-2 विकेट मिले। इसी जीत के साथ कोलकाता की

0: प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बनी। बुधवार को ईडन गार्डन में कोलकाता ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। अब एक नजर मौसम के हाल पर। दिन का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। स्वयं को हाइड्रेट रखें और अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी मौसम विभाग ने। समाचार संकलन आदित्य दुबे का। ये थी आज की ताजा खबरें।
1: आज की ताजा खबर।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।
2: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
0: आकाशवाणी खंडवा।
3: ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
4: सुबह के 7 बजे हैं, आकाशवाणी खंडवा से लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर केंद्रित वार्ता, चाय के फायदे। वार्ताकार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार दिलीप नांदिया।
5: स्टाइल फिटनेस कोच हूं। साथियों, हमारे यहाँ जो दिन की शुरुआत होती है चाय की चुस्कियों के साथ होती है। चलिए हम जानते हैं चाय पीने के फायदे, लेकिन किस तरीके की चाय पीने के लाभ होते हैं और कौन से चाय पीने से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसको हम जानते हैं। चाय के अगर प्रकारों की बात करें तो मार्केट में अलग अलग चाय मिलती है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, लेमन टी है और हमारी देसी दूध वाली चाय मिलती है। तो साथियों, अगर हम ग्रीन टी और ब्लैक टी के फ़ायदों की बात करें, लाभ की बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे लाइफ में, तो ग्रीन टी और ब्लैक टी का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो यह ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करती है। यह दिमाग को अलर्ट और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है कैफीन, जो कि एक स्टिमुलेट होता है, जो कि आपके ब्रेन एवं नर्व को स्टिमुलेट करता है, मतलब अच्छे से काम करने के लिए, सक्रिय काम करने के लिए ये आपके ब्रेन को मदद करता है। साथ में रेगुलर ग्रीन टी के इस्तेमाल से मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है हमारा, जो कि ज़्यादा कैलोरी बर्न करने की जो प्रोसेस होती है वो तेज़ होती है। जब ज़्यादा कैलोरी बर्न हमारे शरीर से होती है तो हमारे जो शरीर में जो फैट डिपोजिशन होता है, डेली ग्रीन टी लेते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे कैटीचीनी हो गया, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। जब हमारी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है तो बहुत सारी जो क्रॉनिकल इन्फ्लामेशन जो पैदा होता है, इंटरनल सूजन जो पैदा होती है, ग्रीन टी के रेगुलर इस्तेमाल से हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से तो बचते ही हैं। साथ में हाँ, इससे होने वाली जो गंभीर क्रॉनिक डिसीज़ होती है, जैसे कैंसर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, इस जोखिम को भी कम करने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ के खतरे को कम करती है ग्रीन टी, साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और इसका रेगुलर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वेट लॉस में भी बहुत अच्छा मदद करती है, डाइजेशन को अच्छा रखती है, एसिडिटी को कम करती है और एक अलग ही हमारी बॉडी में अच्छा फीलिंग पैदा करती है।
6: ग्रीन टी हमारे

0: बॉडी के लिए डिटॉक्स वाटर का काम तो करती है, साथ में हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाती है। पढ़ाई लिखाई में जिनका फोकस प्रॉपर नहीं बनता, फोकस बढ़ाने में, अलर्टनेस देने में भी हमारी ग्रीन टी मदद करती है। एंटीऑक्सीडेंट तो हाई, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार हमारे लिए ग्रीन टी काम करती है, साथ ही स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया होती है और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में हमारी मदद करती है, डाइजेशन में सपोर्ट करती है।
1: यही ग्रीन टी और ब्लैक टी के अपने फायदे देखे। अगर हम बात करें कि इसको कितना लें, तो हम डेली इसको 3 से 5 कप तक ले सकते हैं। कब ले सकते हैं इसको? इसको स्पेशली हम इन बिटवीन मील में ले सकते हैं। इन बिटवीन मील का मतलब होता है कि खाने के 2 घंटे के पहले या खाने के 2 घंटे के बाद। खाने के तुरंत बाद लेने से जो हमारी बॉडी में खाने में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं हो पाते और उसका उतना बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाता है। तो ध्यान रहे कि इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूध वाली चाय, जो अक्सर हम पीते हैं और इसको मान सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। घर में मेहमान आते हैं तो हम चाय से ही शुरुआत करते हैं, और किसी को अगर चाय नहीं पिलाते तो नाराज़ हो जाते हैं कि चाय भी नहीं पिलाया। तो देखिए, हम बात करते हैं कि इससे भी हमारे माइंड को अलर्टनेस मिलती है, कुछ समय के लिए रिफ्रेशनेस मिलती है, पर बाकी इसके कुछ बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हम जाने अनजाने में हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे ये डाइजेशन को बुरी तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि चाय में जो बहुत ही बहुमूल्य एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनोइड, ये एक बहुत ही शानदार तरीके से इस धरती के बहुमूल्य एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम इसे दूध में डालते हैं, और दूध में जब इसको डालने से केमिकल रिएक्शन होता है और ये केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इससे हमारे पेट के जो रोग होते हैं ये बढ़ने लगते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लीवर डिसीज़ के खतरे बढ़ते हैं, किडनी से संबंधित समस्याएं हमें होती है, और अल्सर जैसी दिक्कतें भी हमें पेट में पाई जाती है। चाय के साथ जब हम चीनी डालते हैं, तो आयुर्वेद में तो कहा गया है कि भाई नमक, शक्कर, मैदा जो स्वास्थ्य का दुश्मन है, जहर है, और जब हम दूध, चाय पत्ती और चीनी का मिश्रण करते हैं तो चीनी में पाया जाता है फास्फोरस और सल्फर। जब इसकी अधिकता जब बढ़ती है हमारी बॉडी में, तो अधिकतम पेट से संबंधित जो रोग होते हैं उसके जोखिम हमें बढ़ाते हैं, और साथ में हमारी जो आर्टरीज होती है, जो नलिया होती है, वो सख्त होती है। जैसे कई लोगों को बीपी की समस्या होती है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि ज़्यादा चाय पीने से फ्लोराइड की मात्रा भी बढ़ती है। बड़ा इम्पैक्ट यह आता है जब बॉडी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, तो बड़ा इम्पैक्ट यह देखा गया है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिससे अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, इसकी जोखिम जाने अनजाने में हम बढ़ा लेते हैं। आजकल विटामिन डी और कैल्शियम जैसे मिनरल्स की कमी तो भारी देखी गई है लोगों में। हमारी दिनचर्या और हमारे खान पान को सुधार कर हम छोटी बड़ी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं।
0: इस तरीके से अगर गर्मी के दिनों की बात की जाए, तो अगर हम एक्सरसाइज और हल्की फुल्की वर्कआउट वार्म अप के बाद अगर हम ग्रीन टी का सेवन करते हैं, तो हमारी फिटनेस बनाए रखने में, हमारे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में भी हमारी ग्रीन टी मदद करती है। दोस्तों, गर्मी के साथ ही गर्मी के दिन भी हैं, तो जब भी हम वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे पसीना हमें निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से कम हो जाते हैं। इस वजह से हमें बार बार प्यास लगती है, कभी कभी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हम देखते हैं कि हमें बार बार प्यास लगती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी रहती है, मुंह सूखता है, और यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, पीला कलर आने लग जाता है। तो अभी गर्मी के दिनों को अगर देखें, तो हमें प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बार बार पानी पीना है, प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करना है, बार बार पीना है, और प्रॉपर तरीके से अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो सर को ढक के निकलना है, और नींबू पानी, अपना नारियल पानी, संतरा हो गया, मौसम्बी का हो गया, जूस टाइप से तरबूज हो गया, खीरा हो गया, इनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपका पानी का लेवल आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सकता है। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फल वगैरह का सेवन भी हम यहाँ पर गर्मी के दिनों में करने चाहिए हमें, और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी गर्मी के दिनों में सेवन नहीं करना चाहिए, डिहाइड्रेशन का कारण भी ये बनती है और हमारा डाइजेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। साथ ही हम ORS भी पी सकते हैं हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो गर्मी के दिनों में जब आप घर में आते हैं तो एकदम से ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, थोड़ी देर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ही कोई ड्रिंक हमें लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारी गर्मी के दिनों में बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। इस तरीके से हम कुछ छोटी मोटी सावधानी रख के हमारी जो गर्मी है और ओवरऑल हमारी जो बॉडी है उसका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ हेल्थ हमेशा हमारी प्रायोरिटी पर होना चाहिए, जो कि हम बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में हमारी स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं सफ़र होना पड़ता है उसके लिए, हमारी कार्य क्षमता पर कहीं ना कहीं हम जब बीमार होते हैं

0: हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कार्य क्षमता पे भी दिक्कत आती है और हमारी वजह से हमारे फैमिली मेंबर भी परेशान होते हैं, खुद तो होते ही हैं। तो हमें हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी रखना चाहिए। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका सोना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका प्रॉपर टाइमिंग, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और खाते समय आपका फीलिंग क्या है, इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान में रखा जाए तो हम मेडिसिन फ्री लाइफ की जो बात करते हैं और एक अच्छा वेलनेस की ओर हम जाते हैं, अच्छा है स्वास्थ्य की ओर जाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें उन उद्देश्यों को पूरा होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हेल्थ ही बोलते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो हमेशा अपने स्वास्थ्य को आगे रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य को आगे रखें और इन छोटी छोटी चीज़ों से हम हमारी हेल्थ को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं।
1: अभी आपने सुनी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर केंद्रित वार्ता, चाय के फायदे और नुकसान। वार्ताकार थे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सलाहकार दिलीप नांदिया। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, 1 जून से होंगे तबादले। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी अब 28 मई तक होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया, जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुखी रोडमैप देखी। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास करने और मिलकर उत्पादन करने के नए रास्ते खोल दिए हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी समझौते, भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया

0: मेरोनी ने कहा है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि लोगों और समाजों की आपसी जुड़ाव से भी मजबूत होते हैं। सुश्री मेरोनी कल रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और इटली, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। श्री मोदी को ये मेडल एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अट्यूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और उद्यम आधारित विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30,055 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। बुजुर्गो, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़, किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले वर्ष उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
3: 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे, इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं।
0: आईपीएल क्रिकेट

में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का जायजा लिया। खंडवा के खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में कल जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक ई केवाईसी अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं, आगामी प्रस्तावों और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक ली। मंडला में जिला पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विभाग द्वारा पंचायतों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में दत्तक शिशुगृह शाजापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: जी हाँ, तो लीजिए आपके पत्रों के साथ हाजिर हो गए हम। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गर्मी तो जो है वो अपना परचम सुबह से ही फहराने लग गई है, प्रचंड गर्मी जो है वो लोगों का हाल बेहाल कर रही है। लेकिन आपके इस हाल बेहाल को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए हाजिर हैं हम लेकर कार्यक्रम सुनहरे पत्र। तो स्वीकारें मेरा यानी नीलम त्रिपाठी और
1: चिन्मय दीक्षक का
0: नमस्कार। तो सर, तो मेरे साथ आज हैं चिन्मय जी।
1: हाँ।
0: तो चिन्मय जी, आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि आज गर्मी जो है वो भले ही श्रोताओं को थोड़ी समस्या उत्पन्न कर रही हो, पर हम उनकी समस्याओं के लिए थोड़ी सी बारिश की बूंदों जैसा उपस्थित हुए हैं, उनको संगीत के और पत्रों के उत्तरों के साथ थोड़ी सी राहत प्रदान करने के लिए। हालांकि आज सुबह का तापमान दोस्तों इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की हल्की राहत तो ऐसा महसूस हो रही है मानो 30 से नीचे पारा आ गया हो। बहरहाल उसको और नीचे लाने का प्रयत्न करते हुए सीधे आपके खातों की ओर रुख करते हैं और लेते हैं आज का पहला पत्र। तो नीलम जी, क्या है आज का पहला पत्र?
0: जी हाँ, तो पहला पत्र हमें लिख भेजा है हमारे इन सभी साथियों ने, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी और इनके साथ इनका पूरा परिवार। लिखता है कि सादर नमस्कार, हम आकाशवाणी खंडवा के नियमित श्रोता हैं और यहाँ से प्रसारित फोन इन फरमाइश और आपके मीत ये गीत कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। लाजवाब प्रस्तुतकर्ताओं को इन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई संदेश दिया है।
1: क्या बात है, आपके इस पत्र के लिए हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इतनी दूर से छत्तीसगढ़ से आप हमें सुन रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा
0: जी। और चले दूसरे पत्र की ओर।
1: अवश्य
0: जी हाँ, तो ये पत्र हमें लिख भेजा है श्रवण सिंह गिनारे और मयूरी, ये रहते हैं मयूरी परिसर भोपाल में। ये लिखते हैं कि मुझे कर्म भूमि होने से खंडवा

0: आकाशवाणी जो है ये अक्सर सुनते हैं क्योंकि ये इनकी
1: कर्मभूमि
0: है ना, और निमाड़ी गीत पसंद करते हैं क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाता भी हूँ।
1: क्या बात है।
0: और रविवार की सुबह जो इन्होंने हमारे श्रोता कार्यक्रम में पंकज लाड जी से, विजय सोनी जी जो सनावत से हैं, इनकी बातचीत सुनी, समिश्रात्मक चर्चा का आनंद लिया, तो इसके लिए इन्होंने दोनों ही लोगों को धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने संभवतः पत्रोत्तर में पहली बार आपका नाम सुना है, तो मेरी ओर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रम पसंद आया और आप हमें सुनते रहें। कर्मभूमि हमारी भी खंडवा ही है, तो निमाड़ की इस सुरीली धड़कन को आप और हम मिलकर और सुरीला बनाने का प्रयत्न करेंगे
0: जी। और चलते हैं हनुमंत शिंदे जी ऋषिकेश, ये जो है सिरटे जिला सांगली से लिखते हैं।
1: हाँ।
0: सुनहरे पत्र कार्यक्रम में हम दोनों को ही इन्होंने नमस्कार प्रेषित किया है। सोमवार को इन्होंने जो गुड मॉर्निंग खंडवा हमारे हाथ से, हमारे केंद्र से प्रसारित हुआ था, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। इस माह को पुरुषोत्तम माह कहते हैं। पुरुषोत्तम माह की पौराणिक पार्श्व भूमि क्या है और इसकी जानकारी जो दी गई थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। मानसून और खेती के बारे में उचित जानकारी दी गई जो डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने दी थी। बढ़ते तापमान में स्वास्थ्य के बारे में सावधानी रखने के लिए सलाह दी गई थी, और चाय के बारे में जो रोचक जानकारी दी गई थी गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में, वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। विद्या जी और कीर्ति जी दोनों को ही इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई और जो जानकारी कार्यक्रमों के माध्यम से दी गई वो आपको उपयोगी लगी
0: जी। अब चलते हैं हमारे अगले पत्र की ओर। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी लिखते हैं कि किसान वाणी में नर्सरी प्रबंधन में बड़गांव के शिवम पटेल जी का जो बहुत ही उपयुक्त जानकारी उन्होंने दी थी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। निरुपमा मिश्रा जी ने और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था, और अंतिम बाला पटेल जी ने बच्चों के लिए जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी थी, शिक्षित जानकारी सुनवाई थी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। अंतिम जी ने बताया था कि मोबाइल के फायदे और नुकसान किस तरीके से हैं और इससे बच्चों को बहुत लाभ मिला होगा। और आज इन्होंने सर एक थोड़ा सा निवेदन भी किया है।
1: हाँ, हाँ,
0: कि दोपहर में समाचारों में के समय जो शायद रिले हमारा रहता
1: होता
0: है,
1: हाँ।
0: उस समय कुछ तो भी थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है, तो
1: अच्छा।
0: कुछ टेक्निकल समस्याएं होंगी, ये उसके निराकरण के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा है।
1: बंधुवर देखिए, ऐसा है कि जो दोपहर का प्रसारण है वो सीधा सीधा बंबई से प्रसारित होता है या दिल्ली से अनुप्रसारित होता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में, जैसे कि समाचार दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाते हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो प्राप्त करने वाले सिग्नल हों वो कमजोर हो गए हों, और उसका ये व्यवधान उत्पत्ति का केंद्र हो सकता है खंडवा के बाहर कहीं से रहा हो। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऐसे व्यवधान आते हैं और ये कई बार क्षणिक स्तर पर होते हैं, तो जल्दी ही उनका समाधान भी हो जाता है। किंतु इस आपको सुनने में जो रुकावट आई है हमारे सभी श्रोताओं को, उसके लिए हमें खेद है
0: जी। और सर अगला पत्र हमें लिख भेजा है, ये हमारे जो साथी हैं ये हैं बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र से, मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश मुहाल और इनका पूरा परिवार। ये लिखते हैं कि इन्हें हमारे केंद्र से प्रसारित सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगे, उसमें गुड मॉर्निंग खंडवा है और सुनहरे पत्र कार्यक्रम जो आपने और पंकज जी ने दिया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। हमारी एक बुधवार के दिन जो फिल्म, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में शोले की कहानी जो सुनाई गई और उसके गीत सुनाए गए, उसकी चर्चा तो हर एक पत्र के अंदर है। हर
1: अच्छा,
0: एक पत्र में हमारे गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम की जो है वो तारीफ है, और हर एक पत्र में हमारे जो
1: एक ही फिल्म से ही उसका फिल्म से, उसका जिक्र
0: हाँ,
1: किया
0: मतलब
1: गया।
0: इस समय ये दोनों जो है हीरो हैं इस बात को जी। तो चलिए, इन्होंने भी हमें यही लिखकर भेजा है, और इन्हें युवाणी के सारे ही जो क्रम होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो हेलो फ्रेंड्स हो, चाहे इंद्रधनुष हो, सभी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारा जो अगला पत्र है,
1: अरे इसका उत्तर देने दीजिए, तो हमारे जो साथी हैं बाजार फैल से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युववाणी की आपने तारीफ की, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें, हम अपने सभी श्रोताओं से ये पूछना चाहेंगे कि एक क्रम जिसको हमने गत वर्ष आरंभ किया था आकाशवाणी के 90 वर्ष, उसके उस उसकी प्रस्तुति के विषय में आपको आपकी क्या राय है, क्या वो आपके लिए

0: सदुपयोगी रहा, क्या आपको थोड़ा भी उसको सुनते हुए ऐसा महसूस हुआ कि ये तो कुछ कुछ हमारे बचपन की यादों का जिक्र जैसा होने लगा है या कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों, तो ये हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा
1: जी। और अगला पत्र हमें लिखा है पुराना तालाब डुमरावा से वली अल्लाह अंसारी, निशा परवीन और आसमा नाज अंसारी ने।
0: हाँ,
1: ये लिखते हैं कि इन्होंने भी हमारे गुड मॉर्निंग खंडवा की बहुत तारीफ़ की है, सुनहरे पत्र कार्यक्रम जो 14 मई को प्रसारित किया गया था उसकी बहुत तारीफें आई हैं। और इसके साथ ही ये लिखते हैं कि 15 मई 18 मई और 19 मई को इन्होंने जो आपके मीते गीत कार्यक्रम सुने वो इन्हें बहुत अच्छे लगे। और एक बार इन्होंने फिर से गुड मॉर्निंग खंडवा के लिए विद्या जी और दीपमाला जी दोनों को ही धन्यवाद प्रेषित किया है। सुगम संगीत में अनुराधा पौड़वाल को सुनकर इनका दिल जो है वो खुश हो गया और विशेष कार्यक्रम के तहत डॉक्टर योगेश शर्मा की जो वार्ता थी तेज गर्मी से बचाव और उपाय, इसमें सीमा कराहे जी की वार्ता, टमाटर की खेती, ये सब बहुत इन्हें उपयोगी और कर्णप्रिय लगी, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
0: अच्छा, और डॉक्टर की वार्ता तो एक अलग वार्ता थी और सीमा कराहे जी की जो टमाटर की खेती के विषय में वार्ता थी वो आपने शायद खेती गृहस्थी या किसानवाणी में सुनी होगी, तो दोनों ही कार्यक्रमों के आपको उपयोगी लगे जानकर हमें खुशी हुई। और पूरा यकीन है कि सीमा कराही जी भी अगर इस पत्रोत्तर कार्यक्रम को सुन रही होंगी तो आज उन्हें भी आनंद आ जाएगा।
1: क्या बात है सर। सर अगला पत्र हमें लिखा है विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी सलोनी ईशु बाबा बेबी लुसियाना और पेंटर बाबू ने, ये हैं रामगंज खंडवा से। ये लिखते हैं पहले तो इन्होंने क्षमा मांगी है इसलिए कि ये पिछले सप्ताह जो है वो हमारे कुछ कार्यक्रम कम सुन पाए हैं।
0: अरे कोई बात नहीं, व्यस्तताएं होती हैं। जी जी बताइए
1: जी। और हमारे श्रोता कार्यक्रम में जो इन्होंने विजय सोनी जी के विचार सुनकर इनका मन जो है प्रफुल्लित हो गया, राग रंग में पराग जी और कीर्ति जी ने बहुत ही सुंदर और सदाबहार रागों से संबंधित जो गीतों से परिचय कराया था वो इन्हें अप्रतिम लगा। और फिल्म शोले की कहानी की एक बार फिर से चर्चा हुई है यहाँ पर और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा है हमारा ये एक ही फिल्म से के अंतर्गत शोले फिल्म।
0: अरे वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही अच्छी उपमा का प्रयोग किया, अप्रतिम आपको प्रस्तुति लगी माफ करें। तो ये पत्र पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक ही फिल्म से के प्रस्तोता साथी थे हमारे, उन्हें आनंद आ जाएगा आज के इस पत्रोत्तर को सुनकर। तो आपके इस पत्र के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी हमें लिखकर बताइएगा कि आपको कार्यक्रम कौन कौन से क्या क्या पसंद आ रहे हैं और क्या नहीं पसंद आ रहे हैं, सभी श्रोताओं से आग्रह है
1: जी। और हमारा ये जो अगले श्रोता हैं ये हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और इनका पूरा परिवार। अहमदपुर खेगांव जिला खंडवा से कैलाश फुलमाली हैं और ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े हैं। ये सभी लिखते हैं कि इन्होंने सारे कार्यक्रमों के लिए साधुवाद भेजा है, पंकज लाड जी से ने जो आपके मीते गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और एक बार फिर इन्हें सुनहरे पत्र कार्यक्रम जो हमारा पिछले सप्ताह प्रसारित किया गया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से हमारी कार्यक्रम के हीरो फिल्म शोले की जो है वापस से तारीफ आई है यहाँ पर। और ये लिखते हैं इन्होंने एक निवेदन किया है कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में राजेश खन्ना और तनुजा अभिनीत फिल्म हाथी मेरे साथी की कहानी जो है वो हमें सुनवाई जाए और इसके गीत जो है वो भी सुनवाए जाए। तो
0: बहुत अच्छी बात है, आपका ये पत्र और आपका ये आग्रह हमने नोट कर लिया है और हमारी जो फहरिस्त है अभी तक एक ही फिल्म से के लिए वो अब लंबी हो चली है, उसमें हाथी मेरे साथी भी शुमार कर लेते हैं। और हो सकता है हमारे श्रोताओं को ये शिकायत हो कि हम भैया आपको अपनी वो तो भेजते हैं, सुझाव भेजते हैं हमें ये फिल्म सुनाई जाए, परंतु वो फिल्म हमें सुनाई ही नहीं जा रही है, तो उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ इससे पहले कि वो इसके प्रति नाराज़ हों कि ये जो एक क्रम बना हुआ है लगभग 1 से 2 महीने के आगे तक का बना रहता है और उसकी नियमित तैयारी चलती रहती है, उसके आगे इस रोस्टर में आपकी ये फरमाइशें भी शुमार की जाती हैं
1: जी। और एक और जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने लिख कर भेजा है एक बार फिर से, उन्होंने सारे ही कार्यक्रमों की मतलब जो है वो तारीफ की है। यूथ चॉइस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की इन्होंने जो है ये एक
0: गुजारिश की है।
1: और ये हमारे जो श्रोता हैं वो हैं कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी

0: पवार, हसीना बी पवार, हिना सईद और अलमास बानो और इनका पूरा परिवार। साथ ही ये लिखते हैं कि फिल्म प्यासा की कहानी और गीत सुनना चाहते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत। चलिए, हाथी मेरे साथी और प्यासा, ये दो फिल्में तो हो गई। और यूथ चॉइस का जो आपने जिक्र किया है, इसको हम इसके इसके विषय में हम जानकारी निकालते हैं। ये कैसा कार्यक्रम था, इसके लिए श्रोताओं के कितने उनका पार्टिसिपेशन कितना अधिक होता था इसमें और उन्हें कितना ज़्यादा पसंद आता था, उसके आधार पर ये कार्यक्रम के विषय में जो आरंभ होना है यहाँ से प्रसारण, वो किया जा सकता है। लेकिन उसमें हमारे प्रिय साथियों, समय लगेगा, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, संभवतः दिवाली तक, उसके उपरांत ये आरंभ हो पाएगा
0: जी।
1: और पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला पत्र हमें जो लिखा है ये है इंदिरा विहार दिल्ली, मतलब अभी हम निमाड़ में थे, अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली।
1: दिल्ली
0: तो यहाँ से लिखते हैं डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। ये लिखते हैं कि 14 मई को जो हमने लोकप्रिय कार्यक्रम सुनहरे पत्र की लाजवाब पेशकश के लिए आपके लिए, आपको और पंकज जी को धन्यवाद प्रेषित किया है, इनका दिल गार्डन गार्डन हो गया 14 मई का कार्यक्रम सुन के। 20 मई को प्रसारित एक ही फिल्म के तहत शोले की कहानी और गीत पसंद आए, प्रस्तुतकर्ता जी को बधाई दी है इन्होंने। और ओके, ये लिखते हैं कि सुगम संगीत में अनुराधा पौडवाल जी के जो गीत सुनवाए गए थे वो इन्हें बहुत अच्छे लगे और इन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद लिखा है। और चूंकि मधुमक्खी दिवस तो बीत चुका है लेकिन उन्होंने उसकी जो है वो शुभकामनाएं भेजी हैं।
1: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको मधुमक्खियों के शहद की भांति आपके जीवन में भी शहद घुलता रहे, ऐसी हमारी दुआएं हैं। और आपके इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारा अगला पत्र जो है, इस बार चिन्मय जी पत्र हमारे पास बहुत मात्रा में आए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के पत्र जो है वो शामिल कर पाए।
1: जरूर।
0: ये लिख रहे हैं कि हमारे श्रोता प्रोग्राम के अंतर्गत सनावत के जाने माने विजय सोनी जी से पंकज लाड जी की जो बातचीत थी वो बहुत अच्छी लगी। रविवार को शास्त्रीय संगीत में उस्ताद रशीद खान से उप शास्त्रीय गायन सुना इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। फोन करेगी सुने कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। चेतना कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा विषय पर जो डॉक्टर साहब से विद्याधर मूले सर की जो बातचीत सुनवाई वो इन्हें बहुत लाभकारी लगी। और इसी तरीके से इन्होंने सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है, गुड मॉर्निंग खंडवा जो है वो भी इन्हें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इनके लिए ज्ञानवर्धक था। और विशेष कार्यक्रम में वार्ता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में युवाओं की भूमिका पर उमा भाटे जी की जो जानकारी सुनी थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी।
1: वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धक एक प्रस्तुति थी। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको आपने कार्यक्रमों की इतनी विस्तृत क्या क्या पसंद आया उसकी जानकारी हमें प्रेषित करी है।
0: ये हमारे श्रोता जो हैं ये खरगोन सनावत से अशोक वर्मा जी हैं, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप जी थे।
1: मैं यही पूछने जा रहा था कि ये पत्र भेजा किन्होंने।
0: जी, तो मैं आपकी भावनाएं समझ गई थी। जी, अगला पत्र हमें लिखकर भेजा है ग्राम जामली कला खंडवा से माणक चंद्र राठौर, पुष्पाबाई राठौर और ग्राम छेगांव देवी से अशोक वाघे और वंदना वाघे। ये हमारे काफी पुराने श्रोता हैं जी। तो इन्होंने लिखा है कि सुझाव, शिकायतें और प्रशंसाओं को कार्यक्रम में जगह दी जाती है, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है। और उसके अलावा गुड मॉर्निंग खंडवा की लाजवाब पेशकश के लिए विद्या जी और कीर्ति जी को साधुवाद प्रेषित किया है। शोले फिल्म की कहानी इन्हें बहुत अच्छी लगी। इनका भी एक निवेदन है कि धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म चुपके चुपके की कहानी और गीत सुनवाए जाएँ।
1: अच्छा, ज़रूर ज़रूर, इसको भी हमने शामिल कर लिया है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपके समस्त सुझावों को, आपकी शिकायतों को, आपके रुझानों को हम अपने कार्यक्रम में जस का तस आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो इसका प्रयत्न तो सदैव जारी रहेगा। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।
0: और अगला पत्र जो है इसमें एक बार फिर आपकी और पंकज जी की बहुत बहुत सारी तारीफ है और फिल्म शोले की बहुत, मैंने बताया ना,
1: भूरी प्रशंसा की गई है।
0: हर पत्र में शोले और सुनहरे पत्र छाया हुआ है इस समय।
1: अच्छा
0: दादाजी।

0: वाले मार्ग कुंडलेश्वर वार्ड से हैं ये हस्सू बाबा, मोइन छोटू मोहम्मद फाजिल, जामा मस्जिद रोड भिकनगांव से साफिया अरहान खोकर और अयान खोकर, इन्होंने भी एक और फिल्म की जो है वो डिमांड की है, डिमांड ही बोलना पड़ेगा इसे
1: हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बताइए।
0: तो जी तो ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में गोविंदा और चंकी पांडे अभिनीत फिल्म आंखें के गीत सुनवाएं और कहानी सुनवाने का कष्ट करें।
1: क्या बात है, आंखें भी हमने इस सूची में शामिल कर ली है। अब देखते हैं इसका क्रम कब आता है आपके समक्ष, पर पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, और अगला पत्र हमें लिखा है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन ने। ये लिखते हैं कि इंतजार की घड़ी भी क्या घड़ी होती है, उस समय उस घड़ी में कभी कभी बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि विगत कई वर्षों से माता सबरी

0: चंकी पांडे अभिनीत फिल्म आंखें के गीत सुनवाएं और कहानी सुनवाने का कष्ट करें।
1: क्या बात है, आंखें भी हमने इस सूची में शामिल कर ली है। अब देखते हैं इसका क्रम कब आता है आपके समक्ष, पर पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और अगला पत्र हमें लिखा है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन ने। ये लिखते हैं कि इंतजार की घड़ी भी क्या घड़ी होती है, उस समय उस घड़ी में कभी कभी बड़ा आनंद, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि विगत कई वर्षों से माता सबरी ने भगवान श्री राम के मिलने का इंतजार किया और जैसे ही उन्हें श्री राम मिले उनकी उस खुशी का क्या कहना था। वैसा ही फल इन्हें तब मिलता है जब ये हफ्ते भर सुनहरे पत्र कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और इनका पत्र जो है उसमें शामिल हो जाता है।
1: गलत बात कह रहे हैं आप, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे यहाँ माइक पर बोलना पड़ता है। आप बहुत अनूठी घटना को एक बहुत ही सामान्य हर सप्ताह होने वाली उससे जोड़ रहे हैं, तो हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। आस्थाओं के साथ, आस्थाओं का हमेशा मर्यादित सम्मान होना ही चाहिए, तो कृपया ऐसे ऐसे क्या बोलें, इसे अतिशयोक्तियों से बचने का प्रयत्न करें। हम बिल्कुल समझते हैं कि अपना नाम रेडियो पर सुनना, ऐसे जुड़ना कि हम व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं किसी प्रसारण से, ये बहुत ही अद्भुत भावना है, अद्भुत इसकी अनुभूति होती है, बिल्कुल होती है। और इसका बिल्कुल, इसका ज़रा भी हम अपकार या निरादर नहीं करते, पूरा ससम्मान इसको इसको स्वीकारते हैं कि ऐसा होता है, बहुत सामान्य है, सभी की इच्छा होती है। और जैसे ही ऐसे ये घटना आती है तो लोगों के दिल में जो प्रफुल्लित मन होता है वो तो मतलब उसकी उसका पारावार नहीं हो सकता। परंतु एक इतनी ज़्यादा, इतनी मतलब एक ऐतिहासिक घटना का जो आस्था से जुड़ी हुई हो अरबों लोगों के, उसको इसके साथ तुलना करना जो साप्ताहिक स्तर पर घटित हो रही हो, बंधुवर मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए। बहरहाल ये बताएं उन्होंने पत्र क्या लिखा है।
0: सर पत्र में इन्होंने वही 14 तारीख को जो है गुरुवार को हमारा जो सुनहरे पत्र कार्यक्रम था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर शोले फिल्म की जो है इन्होंने बहुत तारीफ़ की है, गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम की बहुत तारीफ़ की है। और आपको विद्या जी को और सभी लोगों को साधुवाद प्रेषित किया है।
1: क्या बात है, चलिए धन्यवाद, आपको कार्यक्रम पसंद आए हैं ये जानकर हमें अच्छा लगा। आपके ही क्षेत्र में कुछ वहाँ पर एक विशेष महानदी के आसपास कुछ इनका स्थान भी है, शायद शिवरी नारायण कहलाते हैं, क्या कहलाती है वो जगह, तो उसकी याद आपने दिला दी इसका जिक्र करके। तो हम अपने सभी श्रोताओं को बताएंगे कि एक बहुत ही अद्भुत एक छुपा हुआ तीर्थ स्थल जैसा है जो संभवतः सब लोगों को, जनसामान्य को शायद ना पता हो, तो इसको याद करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।
0: धन्यवाद जी। अगला पत्र हमें लिख भेजा है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल की ओर से। ये लिखते हैं कि सुनहरे पत्र कार्यक्रम, सबसे पहले तो आकाशवाणी के 90 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं
0: जी। और ये लिखते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, फिर सुबह होती है और ऐसे समय में आकाशवाणी के कार्यक्रम हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। इन्होंने भी 20 मई को जो हमारी प्रसारित फिल्म थी शोले वो उसकी बहुत तारीफ लिखकर भेजी है, मधुर गीत और कहानी के लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है और लिखा है कि सुंदर सटीक प्रस्तुति के लिए जो प्रस्तुत करता है आदरणीय विद्याधर मूले जी को बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है। आपके मीते गीत कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा।
1: धन्यवाद आपका बंधुवर इतने प्यारे से पत्र के लिए, हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आ रही है। और आकाशवाणी के 90 वर्षों के विषय में हमने अपने श्रोताओं से उसकी प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया ही था, और देखिए पत्रोत्तर में आपकी प्रतिक्रिया आ भी गई, तो बहुत ही हर्ष हुआ हमें ये जानकर। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधु
0: जी। अगला पत्र हमें लिखा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, ये पद्मा टॉकीज नेपा नगर से हैं। ये भी हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं और 90 के दशक के शानदार सदाबहार रोमांटिक फिल्मों फिल्मी गीतों का चयन किया गया था कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में, और विशेष कर सलमान खान, शाहरुख खान की अभिनीत फिल्मों से।

0: मोहित हो गया इनका,
1: अच्छा,
0: और दीपमाला शिंदे जी को इसके लिए इन्होंने बधाई दी है।
1: अरे
0: और
1: वाह,
0: 19 मई को जो 7:20 पर साप्ताहिक विविधा में कवि मोहित कुमार शर्मा का काव्य पाठ सुना था, वो इन्हें काफ़ी पसंद आया, और इसी दिन का इन्होंने आपके मीते गीत की जो तारीफ की है वो भी है।
1: अरे क्या बात है। तो शाह बंधु शाह दंपति को हमारी तरफ से इस पत्र के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां पसंद आ रही हैं। विविधा कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो प्रस्तुत करने वाले हमारे साथी थे उनको आज आनंद आ जाएगा। तो इस पत्र के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
0: और ये लिखते हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी, इन्हें 14 मई का सुनहरे पत्र कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 15 मई को जो नत्थू जी पटेल और साथियों के निमाड़ी लोकगीत सुनवाए गए थे वो इन्हें बहुत अच्छे लगे। 16 मई
1: हाँ
0: का हमारे श्रोता कार्यक्रम में सनावत से विजय सोनी जी से पंकज लाड जी की बातचीत इन्हें बहुत अच्छी लगी। और 17 मई को प्रशांत मालविया जी ने और 18 मई को विद्या सिंह चौहान जी ने जो आपके मीते गीत कार्यक्रम दिया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। एक और पत्र सर हमें प्राप्त हुआ था जो है हमारे श्रोता हैं संजय पंचोलिया जी जो घंटाघर से हैं, ये शायद ये पत्र आकाशवाणी इंदौर को लिखना चाह रहे थे
1: अच्छा,
0: और जो है वो हमारे पास आ गया है।
1: कोई
0: तो
1: बात नहीं। तो हमें पूरा यकीन है कि संजय पंचोलिया जी का ये जो पत्र है, उनकी भावनाएं आकाशवाणी इंदौर के प्रति, वो वहाँ के जो श्रोता बंधु हैं और उनके बीच में जग जाहिर होंगी। अभी जो हमें ये पत्र भेजा था उसका उसके लिए हमारे ये किन्होंने लिखा था जो आपने वाचन किया है?
0: सर गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी ने।
1: क्या बात है। सोनी दंपति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिनका जिक्र किया ना लोक संगीत के लिए, इनको मैंने भी पहली बार यहाँ पे ही सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निमाड़ की यह आवाज़ जो है, ये संभवतः इंदौर से भी प्रसारित नहीं होती। तो ये यहाँ की विशेषता रही और बड़ा अच्छी बड़ी अच्छी प्रस्तुति थी। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आई वो पत्र लिखने के लिए। आपका धन्यवाद।
0: जी यहाँ पर एक पत्र आया है, सरोज जैन जी हैं रामकृष्ण गंज खंडवा से,
1: हाँ
0: इन्होंने भी हमारे गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम की बहुत तारीफ लगी है लिखी है,
1: ये है।
0: और साथ ही ये इन्होंने अपना कुछ व्यक्तिगत जो है वो
1: अनुरोध
0: चीज़ें,
1: किया है।
0: हाँ
1: हाँ बताइए।
0: वो ये कहती हैं कि नेचुरोपैथी की उन्हें ज़रूरत है, तो ये जो वार्ताकार थे उनका नंबर जा रही है तो वो तो हम
1: देखिए, जो वार्ताकार थे उनका नंबर तो हम आपको यहाँ से नहीं दे सकते, किंतु वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आप यदि थोड़ा सा भी डॉक्टर्स के बीच में एक बार चर्चा करेंगी तो वो आपको मिल जाएंगे। खंडवा में अधिकतर जो जगहें हैं जहाँ पे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो इसके लिए बिल्कुल व्यक्तिगत नंबर हम आपको सामूहिक मंच से प्रदान करें, ये तो मतलब निजता का ही उल्लंघन हो जाएगा। परंतु हाँ, ये जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने अपना अपने वो बताया था आपको कि हम कहाँ पाए जाते हैं। आपके लिए जल्दी ही इनका पुनः प्रसारण हम करवा देंगे। तो आप वो ये बता सकते हैं कि जो संपर्क करना चाहते हैं वो लोग कहाँ आकर मिल सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है, किंतु हम इस अनुरोध को क्षमा करें, पूरा नहीं कर पाएंगे।
0: जी, और अगला पत्र ले
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: ये हैं कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी पूजा और पायल, ये लिखते हैं कि 19 मई को ममता जी ने, 18 मई को विद्या जी ने, 17 मई को प्रशांत जी ने जो आपके मीते गीत कार्यक्रम प्रेषित किया था ये इन्हें बहुत अच्छा लगा। 18 मई को प्रभाकर दुबे और साथियों के जो गीत सुनवाए गए थे वो इन्हें अच्छे लगे, और जो हमारे श्रोता कार्यक्रम 16 मई को सुनवाया गया था उसके लिए भी इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: क्या बात है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको प्रस्तुतियां पसंद आई, और आपने तो सिलसिलेवार क्रम से बताया कि किनके आपको आपके मीत ये गीत पसंद आए। तो हमें पूरा यकीन है कि आज आपने उनका दिन बनवा दिया है, और आगे भी हमें ऐसे ही पत्र लिखकर बताते रहिएगा आपको क्या पसंद आ रहा है। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है, उसका भी सहर्ष स्वागत है।
0: जी, और अगला पत्र हमें लिख भेजा है रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा ने, इन्हीं के साथ खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा और निकेश और धर्मेंद्र के साथ ममता बाई भी हैं। ये लिखती हैं कि इन्हें सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और युवाणी आपके मीते गीत आस्था के स्वर नारी जगत कार्यक्रम इन्हें विशेषकर पसंद आते हैं।
1: क्या बात है।
0: जी, और बस इनका

0: और कोई निवेदन नहीं था।
1: क्या आपने आस्था के स्वर का भी जिक्र किया? क्या क्या बात है, मतलब आप सुबह प्रातःकालीन सभा के आरंभ होते साथ ही हमारे साथ जुड़ जाती हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बताइएगा कि आपको किस प्रकार के कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, युववाणी और जिनका आपने जिक्र किया है उसके अतिरिक्त, और उनमें क्या आप परिवर्तन भी देखना चाहेंगे?
0: जी, अगला पत्र हमें लिख भेजा है कहरवाड़ी मोहल्ला जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे और इनके पूरे परिवार ने। ये लिखते हैं कि इन्हें सभी कार्यक्रम वैसे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मंगलवार को जो 19 मई को विविधा कार्यक्रम सुनाया गया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। कवि मोहित कुमार शर्मा द्वारा जो प्रस्तुत काव्य पाठ था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ये लिखते हैं कि लोक रंजनी कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया। युवाणी कार्यक्रम में यूथ चॉइस क्रम को पुनः शुरू करने का
1: ये
0: एक बार
1: यूथ चॉइस का दोबारा आग्रह किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यूथ चॉइस के विषय में आपके आग्रह को जरा भी उसको हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। जल्द ही आपके सामने संभवतः यूथ चॉइस उपस्थित होगा, कुछ नए कलेवर में हो सकता है, बस इतना ही अंतर रहेगा। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधु
0: जी। और अगला पत्र हमें लिखा है सुहाना चौक जसवाड़ी रोड से सूरज कुमार ढाक से ज्योति और इनके पूरे परिवार ने। ये लिखते हैं कि 18 मई के दिन गुड मॉर्निंग खंडवा जो सुनवाया गया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। लोक रंजनी कार्यक्रम मंगलवार को जो प्रसारित हुआ था वो बहुत अच्छा लगा। सोमवार के दिन ही युववाणी कार्यक्रम में जो प्रेजेंटर थे उन्होंने जो जानकारी दी और गीत सुनवाए वो इन्हें बहुत अच्छे लगे। और एक से बढ़कर एक गीत और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम जो है वो प्रेषित किए जा रहे हैं, तो वो इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं।
1: अच्छा, प्रसारित किए जा रहे हैं, धन्यवाद आपका। आपको इस हमारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आ रही है, और आपके जीवन में रेडियो ने बहुत संभवतः क्या बोलें, एक आपका संगी बनने का प्रयत्न किया होगा। सभी श्रोताओं के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, तो हम चाहेंगे कि अगले बार आप हमें लिखकर ये ज़रूर बताएं कि रेडियो आपका किस प्रकार से साथी रहा, है ना। हम आपके संस्मरणों का स्वागत करते हैं, और आपका सूरज कुमार ढाकसे जी, आपको इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और अगला पत्र हमें जो लिख भेजा है ये है प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और खंडवा से श्यामा रायकवार और इनका पूरा परिवार, नेपा नगर से भी साथी हैं इनके। ये लिखते हैं 20 मई बुधवार का कार्यक्रम आस्था के स्वर कृषि चर्चा बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत बहुत कर्णप्रिय लगा, धन्यवाद प्रेषित किया है इन्होंने।
1: धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया कि आपको कार्यक्रम कौन कौन से पसंद आए और आपको क्या अच्छा लगा
0: जी। एक शिकायत भी आई है, हाँ, जिनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़ और सचिन पलक लिखते हैं कि आप हमारे ईमेल और पत्र जो है वो शामिल नहीं करते, बताने का कष्ट करेंगे।
1: देखिए, ऐसा तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ वो फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि किन्हीं के पत्र शामिल करना है और किन्हीं के नहीं करना है। हमारे सामने जो जो पत्र आते आते हैं हम उन सभी को शामिल करते हैं। संभवतः आपका पत्र हमें प्राप्त ना हुआ हो, इसके लिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया हो।
0: एक बार फिर चर्चा में आया है हमारा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, हाँ। शोले फिल्म के साथ में ये पत्र हमें लिख भेजा है राकेश कुमार शिवपुरे और वंदना शिवपुरे ने बढ़वा से।
1: अच्छा, क्या लिखते हैं?
0: ये लिखते हैं कि जो एक ही फिल्म से कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, सुनहरे पल कार्यक्रम इस सप्ताह को मंगलवार को जो प्रसारित किया गया वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, और विद्याधर मूले सर को बार बार कोटि कोटि धन्यवाद दिया है इन्होंने शोले फिल्म की कहानी और गीत के लिए।
1: क्या बात है, आपको हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मुले जी यदि इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो आज विद्याधर मुले का दिन बना दिया है आपने, और आपको इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।
0: धन्यवाद। तो अगला पत्र हमें थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पत्र बहुत सारे हैं। तो सुनहरे पत्र कार्यक्रम के ये नियमित श्रोता हैं, और ये जो हमारे श्रोता हैं ये हैं बिहार से वसीम अकरम अजीम वकार और गुड़िया खातून। ये लिखते हैं कि 19 मई को जो दीपमाला जी की प्रस्तुति थी सुगम संगीत वो इन्हें पसंद आया, और 20 मई को कार्यक्रम आपके मीति गीत इन्हें बहुत पसंद आए, और एक बार फिर 14 मई के कार्यक्रम के लिए आपको और पंकज जी को जो है वो धन्यवाद दिया है इन्होंने।
1: धन्यवाद आपका, और मुझे पूरा यकीन है कि दीपमाला शिंदे जो हैं यदि आज का कार्यक्रम सुन रही होंगी तो उन्हें बहुत हर्ष होगा कि उनके कार्यक्रमों की इतनी तारीफ, उनके कार्यक्रम की इतनी सारी तारीफ हुई है
0: जी। अगला पत्र हमारे पास आया है चमन पार्क दिल्ली से सोनम और

0: सना और आबिदा की ओर से। ये लिखते हैं कि 19 और 20 मई को प्रसारित आपके मीते गीत कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगे। 14 मई की जो पेशकश थी सुनहरे पत्र वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। ये दोनों ही कार्यक्रमों की इन्होंने तारीफ लिख भेजी है और सुनहरे पल कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात है, समझ सुनहरी चीजें आपको पसंद आती हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि सोने के भाव जो हैं वो आजकल थोड़े आम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, परंतु सुनहरी चीजों के प्रति आकर्षण यथावत बना हुआ है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वैसे ही सुनहरी चीजें आप तक ला सकें, उसके लिए पत्र लिखने हैं तो धन्यवाद
0: जी। और अगला पत्र हमें लिख भेजा है राकेश पप्पू सेन, निशा सेन और इनके पूरे परिवार ने। ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे हम फिल्म जो है वो टीवी पर देख रहे हैं और आंखें बंद करके इन्होंने पूरी उस फिल्म का आनंद जो है वो लिया।
1: ये यकीनन इसको सुनने वाले जो हमारे साथी हैं जिन्होंने शोले की प्रस्तुति दी थी वो उन्हें बहुत आनंद आएगा। आपके इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और चलिए जल्दी से हमारे जो रेशमा अंसारी और जमीला शकीला प्रमीला और मोहम्मद सईद अंसारी हैं, ये दिल्ली के श्रोता हैं हमारे। 14 तारीख का इन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख को आपके मीते गीत कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगे और फिल्म शोले की एक बार फिर से तारीफ आई है। और इन्होंने लिखा है कि इस बार आप फिल्म किनारा को लेकर आना।
1: अच्छा
0: जी,
1: ठीक है, इसको भी हमने नोट कर लिया है। हमें अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई है और जल्द ही आपको ये फिल्म भी सुनने में मिलेगी।
0: जेल रोड से दिल्ली से लिखते हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। ये लिखते हैं कि सुनहरे पत्र कार्यक्रम इन्हें 14 मई का बहुत अच्छा लगा, आप दोनों को ही धन्यवाद प्रेषित किया है इन्होंने।
1: धन्यवाद आपका।
0: और एक पत्र हमारे पास में आया है, ये है नफीसा लोखंडवाला जी की ओर से, खंडवा से। ये लिखती हैं कि 14 तारीख को हिमांशु जी ने युवाणी कार्यक्रम में बहुत अच्छे से भावनाओं और विभिन्न रंगों को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, इसके लिए इन्हें बहुत अच्छा लगा। 15 मई को सुनहरे पल कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा और उसके बाद 18 मई को गुड मॉर्निंग खंडवा इनको बहुत अच्छा लगा। और एक बार फिर से इन्होंने लिखा है कि 16 मई को विद्याधर मूले जी द्वारा किशोरदा और आरडी बर्मन साहब को समर्पित कार्यक्रम दिलचस्प लगा इन्हें। साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम में मूले जी ने जो फिल्म शोले को आंखों के सामने जीवंत कर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानवाणी कार्यक्रम की भी तारीफ लिखी है इन्होंने, लिखा है कि देवेश मांडले जी की प्रस्तुति ने इस बार बहुत अच्छी लगी।
1: क्या बात है, आपने तो देवेश मांडले जी का दिन बनवा दिया आज। और आपके पत्र कम आते हैं पर हम कोशिश करेंगे, हम आपसे आग्रह करेंगे, माफ करें, कि आप हमें नियमित रूप से लिखा करें, हम आपको और भी शामिल करना चाहेंगे सुनहरे पत्र में आपकी उपस्थिति को
0: जी। और हमारा अगला पत्र है छत्तीसगढ़ से, नरेंद्र डोम, प्यारी टुक टुक लड्डू और प्रभा देवी डोमीन की तरफ से। 14 मई का कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा और 19 मई को दीपमाला जी की प्रस्तुति ने बहुत अच्छी लगी और 19 मई को ही सुगम संगीत में जो अनुराधा पोडवाल जी के गाए हुए गीत सुनवाए गए थे वो इन्हें बहुत अच्छे लगे। और 20 मई को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में शोले की कहानी और गीत इन्हें बहुत अच्छे लगे।
1: धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया आपको कार्यक्रम कौन कौन से पसंद आए, ये जानकर। आगे भी हमें ऐसे ही पत्र भेजते रहिएगा।
0: बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और राज अंसारी, फातिमा अंसारी लिखते हैं 14 तारीख और 20 तारीख के सारे कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगे।
1: क्या बात है, आपको भी धन्यवाद, आपने कार्यक्रमों की तारीफ के विषय में बताया कि आपको किस दिन की प्रस्तुति पसंद आई, जानकर हमें अच्छा लगा।
0: छोटी बलिया मुंबई से लिखते हैं 14 मई का कार्यक्रम आसमा आमना अंसारी, जुबैदा नेहा अंसारी और बेगूसराय से इकबाल मोगा और अहमद मोगा। 14 मई का कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, 18 मई और 20 मई को कार्यक्रम आपके मीति गीत इन्हें बहुत ही कर्णप्रिय लगा और विद्या सिंह जी और ममता जी को इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए। और साथियों आप देखिए समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो माफ करें, तो आपसे विदा लेते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और आपको लिए छोड़े जाते हैं ये बेहतरीन सा, सुंदर सा, प्यारा सा नगमा।

0: सुनहरे पत्र।
1: अभी सुनहरे पत्र कार्यक्रम आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से। थोड़ी ही देर में
2: डीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
6: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
5: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की

0: यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति बद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा।

0: सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
1: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक, भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से

0: कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, आज के कलाकार अदनान सामी।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी के गाए चंद नगमे। हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। सुबह के 8:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी

प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर

अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था।

40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया। उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है, और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजूमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को जब

रुकना पड़ा। मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी। पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।

दोस्तों, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर ज़ारा, धूम, श्रृंखला, चक दे इंडिया, एक था टाइगर और बंटी बब्ली जैसे फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं आप ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि ये आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

शपथ। ऋत्विक तलाशिलकर और साथियों की आवाज़ों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर ज़ारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों, आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छध्वम संग वदध्वम सम वो मनांसि जानताम। साथ चलें, साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे बाप पहले आप।

0: उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरे बाप पहले आप। दोस्तों आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती।
1: आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

0: लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: मैं

फिल्म वीर ज़ारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है। Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी।

इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा, इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल, इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जिलेवासियों को धूप और लू से बचाव करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से शीतल पेयजल का उपयोग करने, धूप में नहीं निकलने, धूप से बचाव के लिए चश्मे और छाते का उपयोग करने को कहा है। जिले में इन दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन तालाबों, बावड़ियों की साफ सफाई, पुराने तालाबों का गहरीकरण, सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई की जा रही है, ताकि आने वाली बारिश के पहले बेहतर जल प्रबंधन हो सके। निजी समाजसेवी संस्थाएं भी जल प्रबंधन के कार्य में सहभागी बनी हुई है। छतरपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमा शिवाय अर्जरिया ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में एक एक काम जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनिश्चित किया गया है। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य जारी है। इसी क्रम में गौरिहार तहसील में सबसे पहले HLB का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, चांदला निकायों में भी शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी पार जायसवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगण को, सुपरवाइजर्स, ग्रामीण अधिकारी, SDM सहित संपूर्ण टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी और समर्पण से ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। SDM बलबीर रवन ने प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर छतरपुर जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 16 मई से 10 दिन तक संचालित होने वाले कृषि रथ को छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO नमा शिवाय, अर्जरिया उप संचालक कृषि अनिल मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्धस्तर पर जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1,37,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिला नागरिक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी सीताराम कुठारी ने बताया कि जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें किसानों के लिए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी। शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदी 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कोताही ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण टीम में गठित की गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार जायसवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन मा उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
3: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
3: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
3: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
3: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
3: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
3: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
3: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं

0: पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नीलकुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन, यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास

0: पेड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर

जोर जोर से काय काय करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो। आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों

0: वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा।

0: सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
6: हाँ,
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा।

0: इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
1: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल
2: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
3: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
4: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
1: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
2: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
1: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
4: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
2: वो उसे काटने लगे।
0: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
4: अच्छा ठीक है
1: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
2: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
3: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
2: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया फल सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे अटकू मटकू,
2: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
4: पेड़ हमारे
6: दोस्त हैं।
4: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: निमाड़ की सुरीली धड़कन से लीजिए, हाजिर हैं आपके ईमेल्स और पत्रों के साथ। तो स्वीकारिए आपकी रेडियो सखी नीलम त्रिपाठी का नमस्कार। जब से

जी हाँ, तो इस गीत को सुनना चाहते थे हमारे ये सभी साथी निमनाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर, समिडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता, बोरी खुद जाफराबाद से सुधाकर, राजे यादव, प्रशांत जगुताई, साक्षीताई, संचेत, प्रथमेश, स्वामी देशमुख, प्रणाली और सानवी, भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, आनंद राठौर, गिरिजा राठौर, लोकेश जोशी, पायल जोशी, सावन नायक, बाबला यादव, अंकिता जोशी और वैदेही जोशी, नरगोड़ा से कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी गोस्वामी, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया, निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख, नरवेल से पीएस नवाणकर, निर्मला और विशाल नवाणकर, आष्टी जालना से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर, सैयद निजामुद्दीन और राम भाऊ तानले, कपासड़ा बॉर्डर दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा और प्रवीण, छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागबान, नबासी आशु अहमद बागबान, दुखना रानी और जूही इकबाल, बेगूसराय से आबिदा अफसरी, इस्माइल आज़ाद और शाहो भाई वली आलम, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर, मारहरा दरवाज़ा, एटा से नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल रसीद वासी और अनम अब्बासी के साथ यशफ अब्बासी हैं, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, अमरावती से सिद्धार्थ गोडानी, अर्चना ताई, हीरामण प्रणय प्रसिद्धि और महेश रामटेक, बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मुयंक मुणत, चेतन नहाटा और दिलीप सिंह पवार, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, गिरगांव से गजानन नादरे, मरोत राव पांचाल, खंडवा से रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। तो इन सभी की फरमाइश पर अभी आपने सुना ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, वामिका गंगराड़े, ग्राम जामली कला से माणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर और प्रियांशी राठौर, खंडवा से अब्दुल हमीद खलीफा, हबीब सफीक और जावेद, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, खुशी वंदना, स्वाति और प्रयाग चौधरी, ग्राम दुलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून भी हैं, कर्जत से इकबाल अहमद बागवान, शमीम और इनके साथी, खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू देवराज महोबिया, सपना शिवी सलोनी, पेंटर बाबू, अनिल सोनी और सुदामा, सनावर से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बुडाना, आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गडई टिकरी पारा से जोगेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार और जयश्री, सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सांवले, परभणी से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश, खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बैस, रिया, रोहन, अंगद ठाकुर, ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, ओम कुमारी सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, ऋषि सेन, द्वारकीबाई सेन, इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषाबाई चौधरी, फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु, चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज और फरदीन अब्बासी के साथ सुहाना और अरजान अब्बासी और आबना है, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, ईशान और कार्तिक, टोलाते घरा बेगूसराय से इस्माइल आज़ाद, नन्हे बाबू आदिबा और कमल जहां के साथ इनका पूरा परिवार है, छोटी बलिया से नूर आयशा, अहमद बागवान, दुखना रानी, जूही इकबाल और सदफ अहमद फूलवाले हैं, खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा और फाल्गुनी जोशी हैं। तो इन सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

जी हाँ, अगर आप साथ हो तो क्या बात है, है ना। चलिए चलते हैं हमारे अगले ईमेल्स की तरफ और जानते हैं कौन है हमारी ये श्रोता। कजत मुंबई से अहमद मोगा, सुरेश और अजीत मोगा, दिल्ली से अहमद हसन सलमा और गुलाब, बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता, उदय, उज्जवल और मितांश, गंगाजल सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव, संजय, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छे लाल और बुल्की वाली के साथ फलना झा हैं, सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार के साथ मुस्कान है, मोताला से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, गौरी, ओम कुमार और मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ और साइना शर्मा के साथ निवान है, शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, अंकिता और अनिकेत, महसूल सीतामढ़ी से अरकम हुसैन, प्रिंस इशरत अरकम, वसीम और इनके पूरे साथी, जगराव से कमल पाठक, सुनीत पाठक, दीपिका और गव्या, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया, आयान बाबू, पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज और ऋषि के साथ कृष्णा घुड़के हैं, खंडवा से शालिया डावर, हलीमा जिक्रा और आयशा खत्री, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और आशीष राज, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना, भोपालगढ़ से धर्मेंद्र शिपा, कपिल और पूजा परिहार, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: और साथियों इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त करने की दे आज्ञा आपकी रेडियो सखी नीलम त्रिपाठी को नमस्कार। लेकिन याद रखिए आज है गुरुवार और आज 11 बजे से 11:30 बजे तक यानी 11:30 तक रिकॉर्डिंग होती है फोन करे गीत सुने कार्यक्रम की। तो रिकॉर्डिंग के लिए आप नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं, आपको कॉल करना है 0733 यानी 0733-222-6063 पर। तो हमें आपके ईमेल्स पत्रों और फोन कॉल्स का रहेगा इंतजार। दीजिए आज्ञा आपकी रेडियो सखी नीलम त्रिपाठी को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, हम बोल रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। दिन के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आपकी आशा ये एल्बम का नाम आशा भोसले की आवाज, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना, संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स ये एल्बम का नाम है, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मल्लिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: पी बलराम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर

0: महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम, जय वालिया की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, संगीत ललित का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराया।

0: की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्रिस्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में। तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ

0: दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौका।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: अरे पुरवा के झोंकवा में

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ, मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत, जो टेक्स्ट हमने लिखा है, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे, और बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं, जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े, तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना, ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे, तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना, यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना

सुनवाते हैं नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सकें तो जरूर बताइए।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी बहती जलधारा लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव, ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए

0: तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीजें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हवा के साथ साथ। जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।
1: अरे, ए,

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बनफूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्म आया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़ कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जिन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी।

वो उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

कलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमल, तास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज़, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमर

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने की सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी

हमारे लिखे खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काट कर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की मोहम्मद रफी, आशा भोंसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी, भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले, पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं, सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है, तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है। तो चलिए पतिदा फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों। बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

0: अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली लौटकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान भारत की कृषि नीतियों की वैश्विक स्वीकृति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। इसमें उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है।

ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। इस तरह इस साल आरटीई के तहत मुफ्त दाखिला पाने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,17,000 से ज्यादा हो गई है। भोपाल की चर्चित मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने त्विशा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर शव को दिल्ली एम्स भेजने की बात भी कही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज्यादा तपा, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया और 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भिंड, दतिया और निवाड़ी समेत 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। कल रात के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा बनाए रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कल आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी के दर्शन पूजन कर हवन अनुष्ठान किया। झाबुआ के भावेश सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने के लिए राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती में कल राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक दुकानें स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से

0: बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
4: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
5: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
6: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य

0: एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनरिक मेडिसिन।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4थे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।

0: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब, मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति

0: उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम।

0: आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भी देखिए आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने,
2: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई
1: जी।
2: क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके

0: अब अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता
1: हाँ,
0: है।
1: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है, हम
0: अभी
1: अपनी
0: हमारे
1: फोबिया की
0: क्या
1: बात नहीं
0: फोबिया, हम
1: करेंगे
0: इसके
1: बात।
0: बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई
1: वो
0: उन्हें।
1: बताएं अपना,
0: हाँ
1: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ, किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सोमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता, यानी कि सीड मदर कही जाती हैं,
1: जी
0: इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
1: हाँ,
0: चाय दिवस, चाय की
1: अरे
0: चुस्कियां
1: भैया
0: लेते लेते बहुत सारे काम है ना
1: हो
0: खत्म हो
1: जाते हैं
0: जाते हैं, कब हो
1: बिल्कुल।
0: जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और जब भी
1: एक
0: हम
1: देश ऐसा यही है भारत, जहां पे इतनी 50, आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए? चाय
0: चाय
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
0: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहां एक पांचवी चीज होती है, वो चाय
1: चाय
0: होती।
1: होती है।
0: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो
1: तो भी
0: आपका
1: चाय
0: साथी अगर
1: होगी।
0: चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो हैं वो
1: चलती
0: अपना
1: रहती है।
0: आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात भी
1: इसके बारे में
0: होगी।
1: बात करेंगे, और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय के प्याले के साथ में।
0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी, और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग-अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपरे जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चेट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि

0: कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको, के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के बाद लिए उन्हें बाबलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2015 में 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं, और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय
0: अगर
1: बिल्कुल,
0: मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी,
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: अरे
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए उसने मुझे चाय नहीं पिलाई,
0: भाई,
1: बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर इसे हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और पौराणिक
1: बहुत।
0: कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ

0: लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
1: वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं। चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े सबका हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं। और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे, तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: गपशप ना करें, बातें ना करें,
1: बिल्कुल
0: तो भाई उस चाय को
1: आज
0: कहते ना
1: तो
0: तौहीन हो
1: चाय का
0: जाएगी।
1: सम्मान करना जरूरी है
0: बिल्कुल।
1: भाई।
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है, ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग, संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे, खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं।
1: जी, और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला
0: बिल्कुल
1: क्यों गया आखिर, तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है, ये तो हम कहेंगे।
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसा कैसे होगा।
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया,
1: बिल्कुल,
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे।
0: जी।
1: और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है, और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर,
1: स्वादिष्ट मिलती है,
0: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं, और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला है।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में।
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा।
0: हाँ, और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, और फिर हम बैठकर
1: आज तो
0: चाय
1: बनता है।
0: लेकर थोड़ी बहुत

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज
1: की। कहा था आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब हाँ। समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं।

0: और मनाते रहेंगे। चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार, वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा ना वा।
1: क्या बात है, क्या बात। और जैसे तुम बता रही थी ना, बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना, वो पीना पसंद करते हैं।
0: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना। मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है।
1: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं।
0: कप चाय मिल जाने पे।
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: ओहो, क्या बात है भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका, एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही, चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के द्वारा।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जुड़ता।
1: बिल्कुल। और एक मशहूरता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जाँच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप

0: बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहाँ पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
1: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: पे जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
1: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है
0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते
1: हाँ।
0: हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फितरों से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया

0: होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है, बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है, और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

0: और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की,
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़े। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: मैडम आप फिल्म का नाम रहेगा सलाटे और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
1: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटरेस्ट सारिया प्रिया से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहा है रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें

0: मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
1: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
0: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
1: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करिए, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए।
1: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
1: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप 10वीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोल ने दिल में सनम की सूरत आंखों में आके दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
1: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है आजकल, तो पक्षे की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम?

0: आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमे बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं, शीतलता देते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी
1: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए।

0: हाँ मैं अच्छी हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे ड्राइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आपको एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी, ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी, अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरवाइस का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरवाइस सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे
1: नमस्कार
0: हैं?
1: जी, मैं
0: नमस्कार।
1: अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी।
0: अच्छा,
1: जय महाराष्ट्र। आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा
1: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी। मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है, वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ हाँ तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी।
0: एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: में? मैं ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: तौबा ये मत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, बच्चों को से भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गांव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने, BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार पायेश।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबे ग्राम सामनाकर तालुका कागल शिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमें करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वही तो पिछले साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन गाता हूँ। भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हूँ।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोशी बामाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बामाजा बोलूया चांगे भले। सासन काठी डुले जोशीबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोशीबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले काटी।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: ये था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: ना ना।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है ये तो। उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुन

0: पारब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्र विविध भारती के अनुप्रसारित कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम निमाड़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम निमाड़ी लोकगीत FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आप कार्यक्रम युववाणी।

आसमान में टाकी किसने यह सतरंगी माला, कौन अरे डुलकाता है।

0: भरा रंग से प्याला। कितना सुंदर लगता है जब सतरंगी आसमान, जैसे कोई कर रहा हो रंगों से चित्रों का निर्माण। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का इस सुहानी सी शाम में। स्वीकार कीजिएगा आपकी रेडियो दोस्त सिमरन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर आपके लिए लेकर क्रम रंगों से भरा, रंगों से सजा इंद्रधनुष। दोस्तों, इसके रंगों में खो जाएं। उससे पहले आपसे पूछते हैं आज के हमारे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, कनाडा का शीतकालीन राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर तो हम आपको बताएंगे, पर तब तक आपको चलना होगा हमारे साथ इन रंगों की महफिल में।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुम कुछ इस तरह मेरे दिन की शुरुआत करती हो, जैसे ठंड में धूप और बारिश में चाय राहत देती हो। दोस्तों, चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के मन को लुभाती है। मौसम कोई भी हो, पर चाय झट से बन जाती है। दिन भर की थकान हो या परेशान मन, बस चाय ही ऐसी है जो थकान को झट से मिटा देती है। साथियों, आज चाय की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना है। साथ ही चाय उत्पादन और श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, भारत की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को घोषित किया था। इस दिन का उद्देश्य चाय उद्योग से जुड़े लोगों की आजीविका, सुरक्षित कार्य, निष्पक्ष व्यापार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पानी के बाद चाय दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूसरा पेय पदार्थ है। दोस्तों, अब आप भी पीजिए एक कप चाय और हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, गर्मी, तपती धूप और गर्मी का आलम कुछ ऐसा है। पंखे, कूलर, एसी की हवा भी अब तो गर्म लगती है। दोस्तों, इस कड़कती गर्मी में हमें ऐसा लगता है जैसे पल भर के लिए कोई आइसक्रीम या चिल्ड ठंडा कोई ड्रिंक पी लें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें तुरंत ठंडक देती है वे असल में सेहत को नुकसान भी पहुंचाती है। इन कई कूलिंग फूड से डिहाइड्रेशन, डाइजेस्टिव इशू, मोटापा और डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, ऐसी चीज़ें हमें टेम्पररी कूलिंग का एहसास तो करा सकती है, पर हमारी बॉडी टेम्परेचर को इम्बैलेंस कर देती है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें तुरंत एनर्जी या रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी या हमारी प्यास शांत हो जाएगी, पर असल में इसे इस्तेमाल करने से हमें थोड़ी देर बाद थकान महसूस होने लगेगी। ब्लड शुगर तुरंत स्पाइक होता है और हमारे शरीर में इंसुलिन तेज़ी से रिलीज होता है। दोस्तों, इस गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी चीज़ों से जितना हो सके बचाव करें। अब हम आपका भी ख्याल करना होगा, तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

खान पान और कहीं जीवन शैली ही अलग है। दोस्तों, यही विविधताएं विश्व की सुंदर रचना है और समृद्ध इसे बनाती है। दोस्तों, भारत सांस्कृतिक विविधताओं का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ अनेक पंथ, भाषाएं, बोलियां, परंपराएं और त्यौहार प्रचलित हैं, फिर भी सबके बीच एकता की भावना दिखाई देती है। साथियों, यही कारण है कि भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता की मिसाल कहा जाता है। दोस्तों, बात यह है कि आज वैश्विक सांस्कृतिक विविधता दिवस भी है। यह दिवस संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाने और शांति व विकास के लिए अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र दुनिया भर में विकास के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। दोस्तों, हम भी विभिन्न संस्कृतियों को सम्मान करना चाहिए और सम्मान करने के लिए धर्मों का या क्षेत्रों के बारे में पढ़कर, विदेशी कला प्रदर्शनियों में शामिल होकर या अपनी स्थानीय विविधताओं जैसे अलग अलग खान पान पहनावे को अपनाकर इस दिन का जश्न मना सकते हैं। तो चलिए, जश्न मनाते हुए सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने सपनों की खूबसूरती और शक्ति पर विश्वास करते हैं। साथियों, अभी वह समय चल रहा है जब कई विद्यार्थियों के मन में यह सवाल रहते हैं कि कौन सी दिशा हमारे उज्जवल भविष्य में काम करेगी। परीक्षा परिणाम जैसा भी रहा हो, उसकी खुशी मनाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, अपने पसंदीदा विषय और जिसमें आपको अधिक रुचि हो उस विषय को लेकर आगे बढ़ें। अपनी रुचि के हिसाब से आगे के विकल्पों पर विचार करें। एक बेहतरीन करियर बनाने के लिए अपनी रुचि की पहचान करें। सही कोर्स या डिग्री चुनें। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर किसी की क्षमता अध्ययन में ही अच्छी हो। सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस तरह का काम करने में मजा आता है, फिर चाहे वह खेल कूद, गाना बजाना ही क्यों ना हो। साथियों, हो सके तो उसी दिशा में ज़्यादा रुचि रखें जिस तरफ आपको खुशी मिलती हो, और यही इरादे मजबूत हों, हौसले बुलंद हों, तो करियर की दिशा चाहे जो भी हो, सफलता ज़रूर मिलती है। भविष्य उन लोगों का होता है जो अपने सपनों की शक्ति में विश्वास करते हैं। दोस्तों, चलिए अब बारी है एक और गीत की।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले आपको बता देते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न था, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? इसका उत्तर है पीटी उषा से। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, कनाडा का शीतकालीन राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका उत्तर है आइस हॉकी। दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की दे अनुमति आपकी रेडियो दो सिमरन गार्गव को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के ठीक 6:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को

0: प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुआन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।

0: आपका डीडी फ्री डिश।
1: आप सुनी रहे आज निमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
1: आकाशवाणी खंडवा।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
4: अरे जीजी असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
3: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
4: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे, भारत को मिली 40 अरब डॉलर निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यह 5 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें करीब 40 अरब डॉलर के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वीरभूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजीव गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण पार्टी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन, स्कूल शिक्षा, परिवहन विभाग, जनजातीय कार्य और सहकारिता विभाग की एक एक कर समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर यादव ने कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बोर्ड में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीआईआई, फिक्की जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 14 मई को देवास के टोककला इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के पोस्टर का आज विमोचन किया। ये यात्रा 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल स्रोतों की रक्षा में आगे आने की अपील की है।
3: जल संरक्षण को लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जल गंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस सबसे जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े।
0: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संरक्षण पर विचार विमर्श के साथ ही भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश

सरोवर यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन किया है। ये यात्री जून से अगस्त के बीच लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते 20 जत्थों में रवाना होंगे और हर जत्थे में 50 यात्री होंगे। नई दिल्ली में आज 11वीं ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने ई सिगरेट तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये सारा माल चीन से चोरी छिपे मंगवाया गया था। भारत में साल 2019 से ही ई सिगरेट और इस तरह के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दिनों बालाघाट की सुनीता सिहोरे की खूब चर्चा है। उनके घर में 70 तरह के देशी बीजों का अनोखा खजाना है, जो उन्होंने खुद जमा किया है। आजीविका मिशन की बीज सखी सुनीता ये बीज किसानों को मुफ्त देती हैं और ये बीज कम पानी कम खाद में भी अच्छी पैदावार देते हैं। सुनीता जैसी महिलाओं की बदौलत रासायनिक खेती की आंधी में खो चुके देसी बीज एक बार फिर खेतों में लौट रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 454 बीज सखियां और 29 जिलों में 99 बीज बैंक तैयार हो चुके हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जबकि राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। वहीं सतना, रीवा और टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर और अनूपपुर में आज जनगणना 2027 कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में नाव एवं मोटरबोट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक के साथ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। सागर नगर निगम ने CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीहोर जिला अस्पताल में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों को पोषण टोकरियां बांटी गईं। झाबुआ खनिज विभाग के अमले ने जिले में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 5 वाहनों को जब्त किया है। छिंदवाड़ा वनवृत्त में लक्ष्य का 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण पूरा हो चुका है और शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोना और टीला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली $40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार। 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब किसान श्रोता सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर छे आपकी बहन प्रणीता। तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहन होनी, जहाँ हमारा किसान भाई बहन बड़ा बड़ा खेत न की देखभाल करज, वहाँ हम अपना घर में गमला या जमीन में भी छोटो सो बाग बगीचो भी लगाई लेवांच, जे की देखभाल करनू ओख हमेशा सुंदर बनाए रखनू ही हमारी प्राथमिकता रहे। पर हमेशा मौसम परिवर्तन का कारण हमारा पौधा हमारो बगीचो थोड़ो प्रभावित तो होवज सही। इना समय में भी तेज गर्मी का कारण पौधा नख विशेष देखभाल लगज, न ओका में भी पानी देने की अवस्था का साथ ओको समय न पौधा न की पानी की आवश्यकता का तो हमको जाननू बहुत जरूरी छे। भाई बहन होनी, जिन अपना घर में गमला में पौधा लगायल छे, वो इना समय में पौधा नख पानी देता समय इनी बात को ध्यान रख कि शाम का समय में पौधा नख पानी नहीं देव, क्योंकि हम सोचांश की दिन की चिलचिलाती धूप का बाद पौधा नख शाम ख जब पानी मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा, तो असो नहीं छे। कुछ अवस्था में अचानक तेज गर्मी का बाद पानी मिलने से मिट्टी में सी भाप निकलच, जो पौधा न की जड़ नख नुकसान पहुँचावच, न पौधो गलना न खराब होना लगी जाए। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसा समय में देर रात या फिर सवेरा सवेरा मिट्टी का तापमान ख सामान्य होने का बाद ज पानी दियो। भाई बहन होनी, अपनी ग्रह वाटिका का लेन असी छोटी छोटी सावधानी न रखनो जरूरी छे, तबज हमारी ग्रह वाटिका लहलाती हरी भरी रहेगा। न अब कार्यक्रम का आगे बढ़ावा न आपसे पूछ लेवा आज को प्रश्न। तो हमारा आज को प्रश्न छे, बैंगन फसल में फल छेदक या तना छेदक को प्रकोप दिख तो काई उपाय करनू चाहिए। प्रश्न एक बार अरु ध्यान से सुनी लियो कि बैंगन फसल में फल छेदक या तना छेदक को प्रकोप दिख तो काई उपाय करनू चाहिए। नई ना प्रश्न को उत्तर हमेशा की तरह हम आपका देवांगा कार्यक्रम का आखिर में। न भाई बहन होनी, आओ अब हम सुनी लेवा नथुजी पटेल न साथी न को गायल एक निमाड़ी लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाई बहनोनी, हम बात कर ही रहा था ग्रह वाटिका की, तो पानी देने को समय तो मौसम का अनुसार बदल तो भी रहे। अब बात आवाज उनख छाया में रखने की, तो जो पौधा गर्मी सहनशील छे उनख तो हम धूप में रखा न, बाकी पौधा नख छायादार स्थान में या फिर हरी नेट बांधी कर या फिर जरूरत पड़ने पर घर का अंदर भी रखी देवा तो अच्छो छे। फिर पौधा न नमी बनाए रखने का लेन गमला या क्यारी न पौधा की जड़ का आसपास

सूखी घास, सूखा पत्ता या फिर कंपोस्ट की एक मोटी परत बिछाई देवा। एकासी मिट्टी गर्म नहीं होती है, न पानी भी भाप बनी कर नहीं उड़तो है। एक अलावा इना समय में गर्म रासायनिक खाद का बजाय जैविक खाद को उपयोग करनु चाहिए। तेज धूप में रस चूसक कीट भी लगी सकज, तो उनका नियंत्रण का लें 10 से 15 दिन का अंतराल सी नीम तेल को स्प्रे भी करनु चाहिए। एक अलावा पौधा नख यदि जगह बदलता रहवा, कदी धूप कदी छाव, तो पौधा तेज धूप में जलना न छाव में रहने से उनको स्वास्थ्य अच्छो रहेगा। तो भाई बहन होनी, हमेशा हम ख अपनी ग्रह वाटिका ख फलता फूलता देखने का लें छोटी छोटी बातों को ध्यान जरूर से रखनु चाहिए। न भाई बहन होनी, आओ अब हम सुनी लेवा एक निमाड़ी लोकगीत, जेख गाय राधेश्याम चोरे न साथी नना।

0: ना भाई बहन नोहनी, इना निमाड़े लोकगीत का बाद आओ अब हम सुना वार्ता। फोन पर ली गई वार्ता का अंतर्गत विषय छे जैव उर्वरक निर्माण एवं महत्व। न इना बारा में हम खा जानकारी दे रही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अभ्युदय विश्वविद्यालय खरगोन की सह प्राध्यापक डॉक्टर मेघा साहू।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी प्रस्तोता डॉक्टर मेघा साहू बात कर रही हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि जैव उर्वरक क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है और इनका कृषि में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं। तो जैव उर्वरक जो है वो वे प्राकृतिक उर्वरक हैं जिनमें जीवाणु, कवक या सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं और इनका जो महत्व है वो ये है कि ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, पौधों की जो ग्रोथ है उसमें वृद्धि करते हैं और साथ ही रासायनिक उर्वरक की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तो जो जैव उर्वरक है उसके अगर उदाहरण देखें तो हम जैसे है जैव फॉस्फेट जिसको कि हम PSB बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम आदि। अब जो प्रमुख जैव उर्वरक हैं और उनकी तैयारी कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवामृत की। तो इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, साथ ही साथ पौधों को रोगों से भी बचाता है। तो हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री

लगती है। तो जीवामृत को बनाने के लिए सामग्री है गोबर, जो कि लगता है 10 किलो, गौमूत्र, इसकी मात्रा है 10 लीटर, दही जो कि हमको लगेगा 1 लीटर, गुड़ या चीनी ले सकते हैं, इसकी मात्रा है 1 किलोग्राम, और इसके लिए फिर हमको पानी चाहिए और इसकी मात्रा है 200 लीटर। अब हम देखते हैं कि जीवामृत को तैयार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमको पानी में गुड़ या फिर चीनी को मिलाना है। इसके बाद इसमें दही, गोबर या गौमूत्र डालना है। इस मिश्रण को 24 से 48 घंटे के लिए हमको फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है, और उसको बीच बीच में समय समय पर हमको हिलाते भी रहना है। इसके बाद हमारा जीवामृत तैयार हो जाएगा, और इस तैयार जीवामृत को हम खेत में छिड़क सकते हैं, साथ ही सिंचाई के पानी में मिला के उस माध्यम से भी हम इसको दे सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिट्टी की उर्वरता को बहुत बढ़ाता है, पौधे को मजबूत करता है, पौधों को रोगों से बचाता है, साथ ही साथ जो रासायनिक उर्वरक है उसकी आवश्यकता हमको कम पड़ती है। अब दूसरा हम बात करते हैं बीजामृत। तो बीजामृत का जो उद्देश्य है इसको बनाने का, वो ये है कि जो खेती में प्रयोग होने वाला बीज है उसको रोग मुक्त करता है, और जो अंकुरित होने की जो दर है बीज की उसको बढ़ाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि बीजामृत को कैसे बनाया जाता है। तो बीजामृत को बनाने के लिए सामग्री है पानी, जो कि लगेगा 10 लीटर, गोबर ये लगेगा हमें 2 किलोग्राम, गौमूत्र लगेगा 2 लीटर, दही लगेगा 250 ग्राम, और नीम का पेस्ट जो हमको लगेगा 50 ग्राम। अब इसको तैयार कैसे करते हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं कि ये सभी सामग्री को मिलाकर बीज को जो है 10 से 15 मिनट के लिए इसमें इस मिश्रण में भिगो कर रखना है, और उसके बाद बीज को सुखाना है, और बीज को सुखाने के बाद हम उसको बो सकते हैं खेत में। अब ये बीजामृत करने का जो महत्व है वो क्या है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये बीज को जो है रोग मुक्त करता है, साथ ही साथ जो अंकुरण की दर है उसमें तेजी लाता है, और पौधे जो हैं वो मजबूती से बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो हम बात करेंगे वो है घन जीवामृत। तो घन जीवामृत का बनाने का उद्देश्य ये है कि ये मिट्टी में धीरे धीरे पोषक तत्व देने के लिए इसको बनाया जाता है। अब इसकी जो सामग्री है, गोबर जो है वो 10 किलोग्राम है, गौमूत्र 1 लीटर है, दही 1 लीटर है, और गुड़ लगेगा इसमें 250 ग्राम। अब इसको तैयार कैसे करते हैं? सारी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं, गोले या गोटियों का आकार दें, खेत में मिट्टी के साथ मिला दें। इसका महत्व क्या है कि ये मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनाए रखता है, और पौधों की वृद्धि में भी इससे सुधार आता है। इसके बाद अगला जो जैव उर्वरक है वो है नीमास्त्र। अब ये क्या है? नीमास्त्र जो है वो कीट और रोगों से सुरक्षा देने के लिए एक प्राकृतिक जैविक दवा है। इसको बनाने के लिए हमको नीम की पत्तियां चाहिए 1 किलोग्राम, और पानी चाहिए 10 लीटर। तो पहले नीम की पत्तियों को पानी में पीसें, और उसके बाद इस मिश्रण को खेत में छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि जो पौधों को कीट और रोगों से भी बचाया जा सकता है, और साथ में जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनकी ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं संजीवनी की। तो संजीवनी बनाने का उद्देश्य है कि ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी अगर हम सामग्री देखें तो गोबर, गौमूत्र और सूक्ष्म जीवाणु मिश्रण इसको लगता है। इसको फर्मेंटेशन के बाद सिंचाई में मिलाकर इसको खेती में दिया जा सकता है। इसका महत्व ये है कि पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, और साथ ही उत्पादन अधिक मिलता है, और जो भी उत्पाद मिला है वो हमको स्वस्थ उत्पाद मिलता है। इसके बाद बात आती है ब्रह्मास्त्र खाद की। तो ब्रह्मास्त्र खाद का जो उद्देश्य है वो है सभी प्रकार के पौधों और फसलों के लिए सुपर उर्वरक इसको कहा जाता है। इसको बनाने के लिए जो सामग्री है वो है गोबर, गौमूत्र, दही, गुड़, सूक्ष्म जीवाणु, कभी कभी हरी पत्तियाँ और ऑर्गेनिक तत्व का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। समी जो सामग्रियां हैं उसको मिलाकर हम फर्मेंट करते हैं और खेत में मिट्टी में मिला देते हैं। इसका महत्व ये है कि इससे भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पौधों की वृद्धि में तेजी होती है, साथ ही रोग और कीट कम होते हैं। अब हम बात करते हैं श्रोताओं।

जैविक उर्वरक का महत्व क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि जैविक उर्वरक जो है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, प्राकृतिक तरीके से पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं, पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जो जड़ें और पत्ते हैं वो मजबूत होते हैं। और उसके बाद मुख्य बात यह है कि रासायनिक उर्वरक का कम प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह सके। फिर बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जैविक उर्वरक के माध्यम से। फिर सतत और जैविक खेती पर्यावरण और किसान दोनों के लिए लाभकारी है, क्योंकि हम रासायनिक उर्वरक और रासायनिक जो कीटनाशक जो दवाएं होती हैं उनका प्रयोग कम करते हैं। तो इससे दो चीज़ें हैं, एक तो किसानों की लागत कम होती है, किसानों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हमारे जो पर्यावरण है उस वो भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो जैविक उर्वरक की अभी हमने बात की है, इनको बनाना भी बहुत आसान है, ये सभी जो सामग्रियां

0: एक तो किसानों की लागत कम होती है, किसानों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हमारे जो पर्यावरण है उस वो भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो जैविक उर्वरक की अभी हमने बात की है, इनको बनाना भी बहुत आसान है। ये सभी जो सामग्रियां हैं ये हर किसान के खेत में उपलब्ध होती हैं, बाज़ार से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सभी चीज़ किसान के पास उपलब्ध होती है। तो इसकी जो लागत है वो भी बहुत कम है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है और प्राकृतिक तरीके से हम खेती करेंगे तो इससे पैदावार भी बढ़ती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने से जो किसान की आय है जो वो भी बढ़ती है क्योंकि लागत कम हो जाती है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि जैव उर्वरक क्या है, कितने तरह के हमने उर्वरक देखे हैं, उनको बनाने की विधि देखी है और अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो ये कृषि में किस तरह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में प्राकृतिक खेती को सरकार द्वारा भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे जो गांव के आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र में हैं वहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसको बनाने की विधि की ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर किसान को नहीं समझ में आता है तो वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेकर अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकता है। इससे किसान को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है और हमारे पर्यावरण को भी फायदा है। तो दोस्तों आज की वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: भाई बहनों होनी, अभी आप सुनी रहा था वार्ता जैव उर्वरक निर्माण एवं महत्व। न वार्ताकार थी डॉक्टर मेघा साहू। न आओ अब हम सुनी लेवा एको निमाड़ी लोकगीत, जेख गायो जय राम सावने न साथी नन।

न भाई बहन होनी इना निमाड़ी लोकगीत का बाद अब जानी लेवा कृषि उपज मंडी से प्राप्त भाव नकी जानकारी। सोयाबीन भाव रहा न्यूनतम 5,711 रुपया से अधिकतम 8,400 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं भाव रहा न्यूनतम 2,000 रुपया से अधिकतम 2,477 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर भाव रहा न्यूनतम 4,100 रुपया से 7,201 रुपया प्रति क्विंटल। चना भाव रहा न्यूनतम 5,200 रुपया से 5,844 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का भाव रहा न्यूनतम 1,783 रुपया से 1,941 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग भाव रहा न्यूनतम 6,601 रुपया से अधिकतम 7,531 रुपया प्रति क्विंटल। न सरसों भाव रहा न्यूनतम 6,580 रुपया से 6,580 रुपया प्रति क्विंटल जो स्थिर था। न अब जानी लेवा कृषि समाचार। कृषि विशेषज्ञ सलाह देश की जो किसान भाई आने वाला समय में अपना खेत में मिर्च को उत्पादन लेना चाहता हो तो वो इना समय में मिर्च की नर्सरी तैयार करी ले। 400 ग्राम बीज एक एकड़ खेत में बोने का लेन पर्याप्त छे। न उन्नत किस्म का बीज लेने का बाद बीमारी की रोकथाम का लेन 400 ग्राम बीज का 1 ग्राम थिरम या फिर कैप्टान से उपचारित करके न रोप। न भाई बहनोनी अब जानी लेवा मौसम को हाल। आज सूर्योदय हो प्रातः 5:43 पर, न सूर्यास्त हो शाम 6:58 पर। आज दिन को अधिकतम तापमान रहो 42 डिग्री सेल्सियस, न रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। तो भाई बहनोनी ये तो था आज का कृषि समाचार मौसम न मंडी भाव की जानकारी। न आप सुनी लेवा एक और निमाड़ी लोकगीत जेख गायोज प्रेम सिंह चौहान न साथी ना।

भाई बहनों ने इना निमाड़ी लोकगीत का बाद अब जाने लेवा प्रश्न को उत्तर। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न करियो थो, बैंगन फसल में फल छेदक या तना छेदक को प्रकोप दिखा तो काई उपाय करनू चाहिए। ने उत्तर छे, बैंगन फसल में फल छेदक या तना छेदक को प्रकोप दिखा तो फिर एकाम एमामेक्टिन बेंजोएट 5% ESG की 4 ग्राम मात्रा का 10 लीटर पानी में घोल बनाई कर छिड़काव करनू चाहिए। नैना प्रश्न का उत्तर का साथ अपनी बहन प्रणीता का कार्यक्रम समाप्त करने की दियो आज्ञा। राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अभी किसान श्रोता सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह वाह वाह वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
2: मुझे भी
1: बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ?
2: सुनिए,
1: अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने
2: पागल खाने को।
1: वाह वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह क्या बात है, क्या नुकता खींच के मारा है, सारा भेजा बाहर आ गया। लगता है आप शायर हैं।
2: जी नहीं।
1: तो फिर कवि हैं?
2: जी नहीं।
1: तो फिर आप

0: आप
1: जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ।
0: समाज सेवक यानी?
1: कहिएगा नहीं, मेरे दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक।
0: आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कहाँ हैं?
0: अजी डॉक्टर को मारिए गोली, पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे।
1: जी?
0: मेरा मतलब है आप क्या पिएंगे, चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध निपिल से?
1: मुझे कुछ नहीं पीना है।
0: अच्छा तो आप क्या नोश फरमाएंगे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोठ?
1: मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ।
0: हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं
1: जी?
0: या अपने रिश्तेदार जी से
1: जी?
0: यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ।
1: लगता है आप?
0: जी मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है
1: जी।
0: आप आगरा में तो नहीं थे?
1: जी नहीं।
0: बरेली, रांची?
1: जी नहीं।
0: तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा
1: जी,
0: होगा।
1: मैं वहाँ कभी गया ही नहीं।
0: अच्छा।
1: क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है?
0: अच्छा,
1: रिश्वत कितनी देनी पड़ती है?
0: मैं तो यहाँ की बात कर रहा
1: यहां
0: था
1: की। मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया हूँ।
0: अच्छा ठीक चले आए हैं, ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या
1: क्या
0: घर? मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार
1: जी।
0: मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ पागलखाना। देखिए यहाँ अकेले घूमना मना है।
1: क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है?
0: अजी साहब जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे।
1: अच्छा हाँ। तो यहाँ ये भी होता है?
0: यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए।
1: झुकिए? मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां तालियां।
0: अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अबाउट टाइम।
1: ये क्या मजाक है?
0: मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का हिस्सा है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है अब आप बैठ जाइए।
1: बैठ जाइए?
0: यस।
1: बैठने का क्या मिलेगा, तुम कहते हो तो लो मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली।
0: गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया।
1: क्यों किया?
0: पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया?
1: आपने ऐसा क्यों किया?
0: ठीक। मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है।
1: राज की बात?
0: एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था, एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा।
1: भागा?
0: मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार
2: जगे
0: सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल पागलखाने के बाहर सौ की स्पीड से भागते चला जा रहा है।
1: फिर क्या हुआ?
0: इतने में डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ये पागल पागलखाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब 100 की स्पीड से भागा।
3: तुमने उसे भागते हुए देखा?
0: जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा।

0: तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?
1: अरे साहब, मैं उसे कैसे पकड़ता? वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था।
2: गुड, वेरी गुड। आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार हैं।
3: थैंक यू, थैंक यू।
2: हाँ, तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था।
3: अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया। और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा, चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहां से एक कार खरीद कर लाएंगे।
2: अच्छा।
3: उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए।
2: अम्मा, क्या कह रहे हैं आप?
3: अजी, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब, पूरी बात तो सुनिए।
2: सुनाइए।
3: हाँ, तो मैं कह क्या रहा था,
2: यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए।
3: अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है। यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुंच गए।
2: अच्छा।
3: मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। झड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में।
2: अरे बाप रे।
3: अब मैं क्या देखता हूँ कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ, तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया।
2: वाह।
3: फिर उसका पेट दबाया।
2: वाह।
3: फिर उल्टा किया। फिर पीठ दबाई।
2: वाह।
3: फिर उल्टा किया। फिर आखिर में उसका गला दबा दिया। और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहां आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे,
4: राम भरोसे
3: जी,
4: तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है।
1: जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था। ये क्या हुआ?
4: समझदार नहीं था? फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया?
1: आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था, उसे तो मैंने लटकाया था।
4: तुमने लटकाया था? लेकिन क्यों
1: साहब? साहब भीग गया था, मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था।
2: गुड, वेरी गुड।
3: उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप, उधर मत जाइएगा। उधर के मरीज बम्मा फेंक कर मारते हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा।
2: क्यों?
3: उधर मरीज काट खाते हैं।
2: अरे बाप रे।
3: और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा।
2: क्यों क्यों?
3: उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया।
2: अच्छा।
3: और वो रही चौथी बैरक, उधर की पागल कभी मर
2: गए।
3: उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक। अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। मेरा नंबर ये देखिए 37 है।
4: नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो।
3: जी,
4: तुम फिर आ गए।
3: डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गए थे?
4: क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे?
3: मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ।
4: क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है? इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं?
3: नहीं नहीं नहीं, इनकी नाक मोम की है।
4: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। हाँ। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे?
3: चक्कू से।
4: अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं। आप
2: चुप रहिए
3: जी।
4: हाँ, तो राम भरोसे
3: जी सर,
4: तुम मेरी नाक काटोगे
3: जी?
4: पर भाई, इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ।
3: हाँ।
4: फिर ये साहब भी बैठे हैं
3: जी,
4: इनसे बात भी तो करनी है ना।
3: आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे बाद फिर आ जाऊंगा।
4: गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ।
3: अच्छा
4: जाओ।
3: थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा पर एक सलाम, 1 2 1
2: जान बची जान,
3: 1 2 1
2: जान बची जान,
3: 1 2 1
2: जान बची जान।

अभी आप सुन रहे थे प्रहसन जान बची, लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तथा आप सबका कार्यक्रम चित्रलोक में। मेट्रो इन दिनों इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत।

तेरी बातों में उलझा ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे रोमी और तनिष बागची की आवाजों में, नीरज राजावत ने इसे लिखा था और म्यूजिक तनिष बागची का था।

ओके जानू, ये था फिल्म का नाम। जॉनिता गांधी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था, ए आर रहमान का संगीत। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती से। चित्रलोक के बाकी के नगमे कुछ पलों में।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत कार्यक्रम चित्रलोक में। कपूर एंड सन्स फिल्म का नाम है, अरमान मलिक अमाल मलिक की आवाजें।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में ये गीत राबता फिल्म से। इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। प्रीतम का संगीत।

फिल्म पंगा से ये गीत शाहिद माल्या और अजीज कौर की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, जावेद अख्तर ने इसे लिखा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने

बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।

0: यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
3: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में

0: सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में 1 विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: फिर वही रात है। रात के इस पहर ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये नाम।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है, और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them to pass the test.

0: की शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो। ओ!

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड।

आदिति चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

आ जा कि रात ने बाहें खोल रखी हैं, मेरे लफ्जों में तेरे लिए नमी घोल रखी है, तेरी एक झलक को तरसती है ये निगाहें, जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया, बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया। हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती हैं, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा आएंगी कब।

0: आज तो क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कहना।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाख

किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।